फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हिंदुस्तानी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं और अब हम सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सर्वप्रथम नमन करते हैं हम अपनी मातृभूमि को, समूह स्वर में सुनते हैं ये देशगान।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। अब अगली भक्ति रचना हम आपको सुनवाते हैं यास्मीन अख्तर की आवाज़ में।

श्रोता भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अभी अंतिम फिल्मी भजन आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म गुड्डी से इसे हमने लिया है। वाणी जयराम की आवाज में, संगीत वसंत देसाई का है और शब्दकार गुलजार हैं।

0: श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना ही संपन्न होता है। एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:30 हो चुके हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चिंतन, आलेख आदेश शंकर अवस्थी का है।
1: आपसी बातचीत के दौरान यदि हम दूसरों के साथ मधुर, प्रिय और आडंबरहीन आत्मीयता के साथ बातचीत करते हैं तो हमारा मान हमारे सामने ही नहीं बल्कि परोक्ष में भी बना रहता है। लोग हमारे शिष्ट किंवा आत्मीय व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। ठीक इसके विपरीत स्थिति में भले ही हमें सामने कुछ न कहें पर पीठ पीछे न कोई हमें भला कहता है और न सम्मान ही करता है। बातचीत करते समय ध्यान दें कि सामने वाला हमारी बात सुनकर प्रसन्न हो, उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण हो और उसका ध्यान हमारी तरफ हो तो समझिए कि हमारी बात पसंद की जा रही है। किंतु यदि सामने वाले की मुखाकृति में विरक्ति और उपेक्षा के भाव हो तो वहाँ हमारी बात पसंद नहीं की जा रही है। बातचीत का दूसरा पहलू ये कि यदि हम आत्म प्रशंसा में मशगूल हों, लंबी चौड़ी डींगे ही मारते हैं, बढ़ चढ़ कर बातें बनाते हैं तो निश्चित समझिए कि हम हीन भावना से ग्रस्त हैं। हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति ही दूसरों की सुनने की बजाय अपने ही कारनामे अतिरंजित ढंग से प्रस्तुत करने के आदि रहते हैं। वे शायद इसलिए भी कि प्रशंसा सुनकर उनका अहम तृप्त होता है, वे मदमस्त हो उठते हैं और अंदर ही अंदर वे अपनी महत्ता का अनुभव करते हैं। अहम तृप्त से मनुष्य अपनी निर्बलताओं को आँखों से ओझल करने का विफल प्रयास करता है। यहाँ हमें यह न भूलना चाहिए कि आत्म प्रशंसा सुनकर हम थोड़ी देर के लिए कल्पना के सुखद जगत में भले ही विचरण कर लें किंतु संसार और समाज की कटुता और कठोरता से हम आंखें नहीं मूंद सकते। यदि हमें अपनी प्रशंसा खुद करनी पड़ जाए तो इससे यही सिद्ध होता है कि दूसरे हमारी तारीफ करने के लिए राजी नहीं, क्योंकि वे हमें तारीफ के लायक नहीं समझते। इसका दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि यदि हम आदतन अपनी प्रशंसा खुद करते हैं तो दूसरों को हम अपनी प्रशंसा करने का मौका ही कहाँ देते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे बढ़ते हुए अहंकार और आत्मश्लाघा के भाव से चिढ़कर दूसरे हमारा विरोध और निंदा करने लग जाते हैं। आत्मश्लाघा की से ग्रस्त व्यक्ति कभी दूसरे की प्रशंसा न तो करता है और न दूसरे की प्रशंसा ही सुनता है, क्योंकि आत्म प्रशंसा करते करते वो अपने सामने किसी को प्रशंसा के लायक समझता ही नहीं। स्पष्ट है कि जो तैरना जानता है वो पानी में कूद कर तैरने लगता है, लेकिन जो तैरना नहीं जानता वह तो यही कहेगा कि मुझे तो जरा जुखाम हो गया है, वरना मैं तो घंटों तैरने का रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसा कहकर वो अपनी हीनता छिपाने की उपहासास्पद कोशिश करता है, किंतु उसकी बात की सत्यता दूसरे अवश्य तार जाते हैं। आत्म प्रशंसा के लिए ही तो हम अपने प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अवसरों पर दूसरों को उपहार भेजते हैं, दावतें देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, किंतु हम इस तथ्य से अनभिज्ञ रहते हैं कि प्रशंसा की भित्ति कमजोर बालू पर खड़ी है। अवसर आने पर ऐसे सभी प्रशंसक हमें छोड़ भागते हैं। प्रशंसा मनुष्य की कार्य शक्तियों को पंग कर उसे छोटी सी प्राप्ति में तुष्ट देती है। ऐसा व्यक्ति सस्ती प्रसिद्धि से संतुष्ट होकर मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति जितना कमजोर और उथला होता है वह उतनी ही आसानी से प्रशंसा से विजित हो जाता है। प्रशंसा एक प्रकार का झूठा आवरण है। प्रशंसा एक ऐसा दर्पण है

0: कार्य शक्तियों को पंग कर उसे छोटी सी प्राप्ति में तुष्ट देती है। ऐसा व्यक्ति सस्ती प्रसिद्धि से संतुष्ट होकर मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति जितना कमजोर और उथला होता है वह उतनी ही आसानी से प्रशंसा से विजित हो जाता है। प्रशंसा एक प्रकार का झूठा आवरण है। प्रशंसा एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने सही रूप को नहीं देख पाता, जिसके कारण वो अपने बारे में ऊंचे मंसूबे बांधता रहता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान, वक्ता, प्रशासक या सुंदर समझने लगता है, जबकि इसका परिणाम हमेशा उल्टा ही होते देखा गया है। अध्यात्म जगत में प्रशंसा मान या आदर की भूख एक प्रकार का मद है। प्रशंसा करने वाले से प्रेम करना तथा निंदा करने वाले या आलोचना करने वाले से घृणा या तिरस्कार करना दोनों ही विवेक की सीमा का अतिक्रमण है। वास्तविकता इनके मध्य में स्थित है। उचित तो यह है कि प्रशंसा या निंदा में हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपने जीवन को समुन्नत कर लें, उन्नत बनाने वाले सुझावों को ग्रहण कर लें, चाहे वे प्रशंसक से आए या आलोचक से। स्वामी तुलसीदास, भक्त सूरदास, राजरानी मीरा, गुरु नानक, संत कबीर, महात्मा दादू को कभी ये चिंता नहीं रही कि कोई उनकी प्रशंसा करता है। वे तो निरंतर अंतः प्रेरणा से सधैर्य सहित साधना करते रहे। प्रशंसा के अभाव में वे कभी विचलित नहीं हुए। मीराबाई अनेक निंदाओं के बावजूद बड़ी दृढ़ता से भक्ति के गीत गाती रहीं। गीत गाते गाते काव्य जगत में अमर हो गई। इसलिए शराफत और जहनियत का तकाजा यही है कि हम अपने जीवन में प्रशंसा रूपी बीमारी से बचें। एक शायर ने सच ही कहा है, यूं तो मुंह देखे की बात करते हैं सभी कोई, बात तब है जब मेरे बाद मेरी बात रहे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन FM एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:35 हो चुके हैं। अब हम सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान, और आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषादराज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषादराज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। निषादराज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:45 हो चुके हैं और अब हम आपको जानकारी देंगे आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोता, अब से कुछ ही देर में सुबह 6:50 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का। सुबह 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट आप सुन सकेंगे सुबह 7:20 पर।

प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन पाएंगे आप सुबह 8:15 पर। कार्यक्रम महिला जगत का समय होगा प्रातः 8:30 पर।

प्रातः 9 बजे विश्व पर्यावरण दिवस पर रेडियो रिपोर्ट सुनेगा। प्रातः 9:30 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। जिले की चिट्ठी, इसे हम भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुबह 10 बजे। फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 10:05 पर।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से समाचार प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे दोपहर 2:10 पर। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर 2:15 पर। विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुबह दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:30 पर।

गुड इवनिंग बालाघाट का समय होगा शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा। शाम 7 बजे कार्यक्रम विवरण सुनिएगा। शाम 7:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 7:21 पर वक्त होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

शाम 7:30 पर ग्राम सभा हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा रात्रि 8:00। पॉप म्यूजिक का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे समाचार। विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात्रि 9:30 से। रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो श्रोताओं, ये थी विवरण हमारे आज की सभा में प्रसारित और अनप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है अपने रेडियो सेट पर प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो चुके हैं और ये वक्त है सदाबहार फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का पहला नगमा किशोर कुमार और साथियों के स्वर में, गीत के बोल वर्मा मलिक के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और आप भी आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म कंगन का ये गीत, महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाज में। गीत के बोल अनजान के संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में, गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत सूर्योकार का है और फिल्म का नाम है कांच की गुड़िया।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम का अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है कल आज और कल, आवाज किशोर कुमार की, गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओ, इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का ये सफर यहीं तक। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 होने ही वाले हैं और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार कुछ देर में।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश, समय पर पूरा हो मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम। और भाजपा ने प्रदेश के दो और कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले हजीरा जाएंगे और औद्योगिक तथा अवसंरचना परियोजना की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरे का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है।

0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रदेश आज इंदौर के एक निजी होटल में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस फोरम में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये फोरम भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: इंदौर में 9 जून से प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग के सचिव निशांत वरमड़े इंदौर पहुंचे और आयोजन से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री वरमड़े ने होटल शेरिटन, मैरिट होटल और ग्रामीण हाट बाजार सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल संचालन के प्रथम चरण के कार्य पूरा होने के बाद परियोजना के आगामी चरणों के कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रमुख व्यावसायिक केंद्र इंदौर में मेट्रो रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। दोनों नगरों की मेट्रो रेल परियोजना के सभी चरणों के संपूर्ण कार्यों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। समग्र प्रगति की दृष्टि से दोनों परियोजनाओं के 2/3 कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश सचिव रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया है। इन सीटों के लिए नामांकन जमा करने की तिथि 8 जून है। जरूरी हुआ तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल लोकभवन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष विभाग के साथ चर्चा करते हुए विश्व सिकल सेल दिवस के तारतम्य में सिकल सेल उन्मूलन गतिविधियों को सघनता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उक्त पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वर्ष 2024-25 के लिए दिए जाएंगे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित

रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन सभी आवेदनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इंदौर में शासकीय सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम में खुड़ैल तहसील के ग्राम गारी पिपलिया में देव धर्मराज मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सिंगरौली कलेक्टर की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पंचायत विभाग और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का।
1: नमस्कार बालाघाट।

कार्यक्रम सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं को हमारा स्नेहिल अभिवादन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। और श्रोताओं, आज के अंक के साथ मैं हूं आपकी रेडियो फ्रेंड आभा राणा। श्रोताओं, जून का महीना शुरू हो चुका है, जेठ की तपती गर्मी धूप। श्रोताओं, प्रकृति भी अपनी अनुपम कृतियां लिए हुए है। इतनी तपस में भी सदाबहार मदमस्त गुलमोहर हमें बड़ी शीतलता प्रदान करता है। अमलतास की पीताम्बर छटा देखकर मन प्रफुल्लित हो ही जाता है। जी हाँ, प्रकृति और पर्यावरण का अद्भुत संयोग मन में बड़ा ही सुकून देता है। और श्रोताओं, आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को हम इसे मनाते हैं। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। श्रोताओं, पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी का दायित्व है, क्योंकि हम तभी अपनी धरा को प्रसन्नचित रख पाएंगे जब हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित कर पाएंगे।

श्रोताओं, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो अंततः हम खुद का ही अस्तित्व खतरे में डालते हैं। जी हाँ, बड़े बदलावों की शुरुआत छोटे प्रयासों से होती है, जैसे कि पानी का बचाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पेड़ अधिक से अधिक लगाना। श्रोताओं, विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो पर्यावरण की कीमत पर न हो। हमें ऐसे विकल्पों को अपनाना होगा जो प्रकृति के अनुकूल हों। तभी तो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का ये जो संकल्प है ये पूरा होगा।

श्रोताओं, एक पेड़ लगाने से लेकर कचरे का सही प्रबंधन करने तक हर छोटा योगदान मायने रखता है। प्रकृति की रक्षा करना किसी एक का काम नहीं, बल्कि हम सब की साझा जिम्मेदारी है। श्रोताओं, अब हम साझा करते हैं आपसे आज का विचार। जी हाँ, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण को सबसे बड़ा धर्म माना था। पेड़ केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं, पानी लाते हैं और शुद्ध हवा देकर जीवन बचाते हैं।

श्रोताओं, अब हम जानते हैं आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जानते हैं आज का इतिहास। जी, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। सन 1990 में ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी का देहांत हुआ था आज के दिन। 2001 में शाही हत्याकांड जांच आयोग के एक सदस्य माधवन के इस्तीफे से नेपाल के शाही परिवार की जांच का कार्य अवरुद्ध हुआ था। सन 2002 में भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव की पाकिस्तान ने खारिज किया। ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था 2005 में आज ही के दिन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का भारत सरकार को निर्देश दिया था सन 2008 में। श्रोताओं, आपसे होंगी बातें और भी, फिलहाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम शामिल करते हैं 5 जून को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। सन 1972 में योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं, इनका जन्म हुआ। सन 1961 में भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन, इनका जन्म हुआ। प्रेम खंडू थंगुन, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था सन 1946 में आज ही के दिन। सुब्रमण्यम रामास्वामी, जो कि भारतीय राज्य पुदुचेरी के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1949 में। गोविंद शंकर कुरूप, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इनका जन्म हुआ था सन 1901 में। सिकंदर हयात खान, जो कि स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक काल में पंजाब राज्य के प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था 1892 में आज ही के दिन। श्रोताओं, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एनएम जोशी, इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1879 में। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में होंगी आपसे और भी बातें, फिलहाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं ये नगमा।

श्रोताओं, इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे। नमस्कार, बालाघाट में हम सुन रहे थे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। तो श्रोताओं, अब हम जानते हैं आज के दिन जिन लोगों के निधन हुए हैं। सन 2020 में वेद मारवाह, जो कि दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे, इनका देहांत हुआ था। कुबेर नाथ राय ललित निबंध में विशिष्ट योगदान के लिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने अंतिम सांसें ली थी सन 1996 में आज ही के दिन। प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन, इनका निधन हुआ था आज ही के दिन सन 1942 में। श्रोताओं, कार्यक्रम में जानेंगे और भी बातें, लेकिन फिलहाल शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबाला रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोताओं, पेड़ पौधे लगाएंगे हम पृथ्वी को बचाएंगे, और इसी संकल्प के साथ आपको विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: श्रोताओं, इसी के साथ समेटते हैं हम अपना पिटारा आज के नमस्कार बालाघाट का, क्योंकि वक्त हो चला है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला राकेश वर्मा, अंकित जागोले का। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रखें अपना और अपनों का ख्याल। दे हमें अनुमति, स्वीकारें हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार बालाघाट।

श्रोताओं, आपके लिए एक सूचना। आज शाम 6:30 बजे सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम समय याद।

ये आज शाम 6:30 पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। अब हमारा अगला अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुनिएगा समाचार प्रभात अब से कुछ ही देर में।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड

0: योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी

0: प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

0: प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली गजल।

श्रोताओ, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली गजल हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

श्रोताओ, इसी के साथ सुगम संगीत का ये सफर यहीं तक। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम महिला जगत का।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को दिनेश्वर जाना का प्यार भरा नमस्कार। मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। सखियों, क्या देंगे आने वाली पीढ़ियों को, ऐसा ही चलता रहा तो बेहतर होगा। सुरक्षित पर्यावरण या बड़ी बड़ी हवेलियां, क्या बेहतर होगा, आप समझ रही हैं ना। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सुरक्षित संरक्षित और प्यार भरा माहौल, न कि हवेली, जहां उन्हें शारीरिक पोषण, भावनात्मक सहारा और मानसिक रूप से सीखने के पर्याप्त अवसर मिल सके। सखियों, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह भी है कि उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रकृति के सीधे अनुभव, जैसे मिट्टी में खेलना, पौधे लगाना, चिड़ियों को देखना, ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में शामिल करें तो निश्चित ही उनको भी वो सीखने मिलेगा जो उन्हें पर्यावरण से जोड़ेगा और व्यवहारिक ज्ञान भी देगा। सखियों, हम देखते हैं कि बच्चों को स्थानीय पार्कों या बगीचों में हम घुमाने ले जाते तो हैं, लेकिन कब ले जाते हैं, छुट्टी के दिन, संडे के दिन, है ना। पर जब अभी पूरी छुट्टियां हैं तो उन्हें पत्तियों से, फूलों से, तितलियों से, इन सबको समझने का मौका दें। बागवानी, नेचर वॉक, अवलोकन से धीरे धीरे जोड़ें, जिससे वे प्रकृति से गहराई से जुड़ सकेंगे और उन्हें पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक और संवेदनशील बनाएं, यह तब होगा जब हम सब करेंगे, है ना। सखियों, हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। मानवीय गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या कहती हैं आप, है ना, आप हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। वर्तमान समय की बात करें, तापमान बढ़ने से कई सारी परेशानियां हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। हमें लगता है ना कि अब कैसे जाएं, कहां जाएं, जैसे ही 9-10 बजते हैं वैसे ही हमारी मन में एक अजीब सी उलझन सी होती है। सखियों, इन सब समस्याओं से बचाव के तरीके हैं जो हमें बहुत जरूरी होते हैं। वृक्षारोपण करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी को कुछ हम संरक्षित वातावरण दे पाएंगे।

0: मैडम, आज हम आपसे जानते हैं पर्यावरण संरक्षण क्या है और कैसे करें।
1: सबसे पहले तो आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी समझते हैं कि पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि यदि स्वच्छ पर्यावरण है तो हम स्वस्थ हैं। जैसा स्वच्छ पर्यावरण हमें मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य उतना ही स्वस्थ होगा। तो पर्यावरण का कोई एक परिभाषा तो है नहीं, पर्यावरण तो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। हर एक चीज, चाहे वो वायु हो, जल हो, पानी हो, जिन चीज से हमारा शरीर बना है, इन्हीं चीज प्रकृति के बीच में ही हम जी रहे हैं। इन्हीं चीजों की स्वच्छता पे ही हमारा जीवन टिका हुआ है। तो हम छोटी छोटी चीजों से ही पर्यावरण की संरक्षा करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे यदि हम जल की बात करें तो जल को हम साफ रख सकते हैं। एक स्वच्छ जल के लिए हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं, घर में छोटा फिल्टर लगा करके पीने के पानी को स्वच्छ कर सकते हैं। फिटकरी का छोटे छोटा यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक की आप सुनते होंगे कि हमेशा एक पहल चलती है कि प्लास्टिक के थैले यूज ना करें, तो वो भी एक हम उसका भी पालन कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक के थैले का यूज ना करते हुए कपड़ों के थैलों का यूज करें, कांच की बोतल यूज करें, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज ना करें। तो इन छोटी छोटी सी ही बातों का, हमें कोई एक बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हम इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रख करके भी बचा सकते हैं पर्यावरण को खराब होने से।
0: मैडम, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पर्यावरण को बचा सकते हैं। यदि हम अब बात करते हैं कि पर्यावरण सुधार संबंधी कौन सी ऐसी पहल होनी चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, पर्यावरण बच सके। दिनों दिन अंधाधुंध कटाई पेड़ों की, और कई तरह से ऐसे हमारे जो कार्य हैं जो ही पर्यावरण को दिनों दिन बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: जी हाँ, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो वृक्षों की कटाई है। जैसा मैं आपको अपने विषय में बोलूं तो मेरा जन्म भी बालाघाट में ही हुआ है। मैंने शायद, मुझे याद होगा कि ये फर्स्ट है, पहला वर्ष 2026 का जिसमें हम इतनी गर्मी देख रहे हैं। अन्यथा हम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाते थे, सारी गर्मियां हम कुछ ना कुछ में हमारा काम होता था। हम घर से निकलते थे, पढ़ाई के लिए जाते थे, नौकरी के लिए, या और भी जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी है, घर से तो निकलना ही होता है, करते थे, बाहर जाते थे, काम होता था। लेकिन इस वर्ष एक अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है कि घर से निकला जाए, पर मजबूरी में निकलते हैं। तो उसके बाद जब घर आओ तो समझ में आता है कि कितना अधिक टेम्परेचर है। तो यदि बालाघाट की बात करें तो बहुत अच्छा हुआ है, ओवरब्रिज बना है, चौड़ीकरण हुआ है। एक सपना भी था कि बालाघाट भी बड़े शहरों की जैसा दिखे, सुविधाएं हो, तो देख के तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा लगता है कि क्या इसमें जो थोड़े से पेड़ों की कटाई हुई है, क्या वो भी एक कारण है इस वर्ष की गर्मी का? चौड़ीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कट रहे हैं पेड़, तो हमें उसके एवरेज में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जितने पेड़ विकास के लिए यदि आवश्यकता है, कटाई हो रही है, तो हम उसके आधार पे दूसरे किसी भी स्थान पे पेड़ों को भी लगाएं, और ना कि सिर्फ पेड़ों को लगाएं बल्कि उनकी सुरक्षा भी करें, उनमें फेंसिंग करें, समय समय पर पानी दें, देखरेख करें। और यदि कुछ एक ऐसा एरिया देख लेते हैं जहां हम एक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, तो किसी एक व्यक्ति की व्यवस्था करें जो वहां पर पे रह के देख सके कि किसी प्रकार से पेड़ों को नुकसान ना हो, क्योंकि आवश्यकता है विकास की तो वृक्ष की भी तो आवश्यकता है। और फिर कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। तो जो चीज हमने खो दी है, तो वो ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम पा नहीं सकते। हम फिर से वृक्ष लगा के बालाघाट जिले को एक हरा भरा कर सकते हैं। हम जीके में भी पढ़ते थे कि बालाघाट हरियाली में प्रथम स्थान पे है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वृक्षों की कटाई से ये स्थान हट रहा है? तो यदि ऐसा है तो हम सब एक पहल करके इसको फिर से बालाघाट को प्रथम स्थान पे भी ला सकते हैं।
0: ये आपने बात किया सामाजिक पहल की, बहुत अच्छी बात है। और मैडम, हम बात करते हैं, हम सबके कर्तव्य हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्वार्थ वशीभूत होकर इन सब बातों को नकारा कर देते हैं और आगे, जैसे आपने कहा ना, विकास की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो विकास की दौड़ पे अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं?
1: देखिए, विकास तो आवश्यक है ही, बिना विकास के तो हमारा आगे जाना संभव नहीं है। कि हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है कि हमें जाना है, पर जैसा गाड़ियों का ही यदि हम ले, तो गाड़ियों का डीजल, पेट्रोल

0: पर्यावरण का रखे ध्यान जीवन बनाए बहाल। और आज है पर्यावरण दिवस, इस विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं अधिवक्ता नमिता चिले। आज के कार्यक्रम में मैडम आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: का जो एक धुआं होता है ये हमारे पर्यावरण को खराब करता है। पर दिक्कतें ये है कि हमारे स्कूल कॉलेज अब दूर हो चुके हैं। पहले सब चीजें पास हुआ करती थी तो हम साइकिल से चले जाते थे, पर अब हमारे स्कूल कॉलेजेस दूर हो गए हैं, शिक्षा के लिए हमें थोड़ा दूर जाना होता है, हमें वाहन का उपयोग करना होता है। तो हम एक ऐसा भी तो कर सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स मिलके एक गाड़ी का उपयोग कर ले। यदि चार है तो चार अलग अलग गाड़ियों से क्यों जाना, यदि कॉलोनी में एक साथ किसी स्कूल या कॉलेज में है तो हम ऐसा कुछ एक उपाय कर सकते हैं, वो कर ले। अभी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहन का एक अच्छा, बहुत अच्छा पहल किया है। आप देखे होंगे इस बार जो पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण पेट्रोल पंप में लाइन थी, तो वहां पर भी जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन थे वो निश्चिंत थे इस भीड़ से, इस कमी से या इस दिक्कत से। तो हम एक इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करके भी जो वातावरण दूषित, पर्यावरण को बचा सकते हैं।
1: और पर्यावरण संरक्षण और सुधार उनसे संबंधित विषयों के जो उपबंध होते हैं, आप एक अधिवक्ता हैं, तो उसके लिए जो अधिनियम बने हैं उसके बारे में कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, हमारा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी बना हुआ है, जिसमें कुछ उपबंध दिए गए हुए हैं। लगभग 30 के आसपास उसमें कुछ सेक्शन है, 26-27, तो उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि आप अधिनियम कैसा होगा, किस प्रकार की चीजें उसमें, वायु का, जल का, की चीजों को लेकर के हम किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बहुत सारे पावर्स बताए गए हैं कि वो जलवायु और जो मिट्टी है, तो मिट्टी किस प्रकार की, मिट्टी में हम कौन सी फसल लगा सकते हैं, कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, बारिश में यदि जल गंदा आ रहा है तो हम उस गंदे पानी को किस तरीके से साफ कर सकते हैं, वायु में यदि किसी प्रकार का दूषित तो हवा आ रही है, कुछ हो रही है, तो उस चीज को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। इन चीजों के लिए बकायदा स्टेट और गवर्नमेंट की तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, जिनकी बकायदा ट्रेनिंग्स होती है। वो फिर हमको समय समय पर पे आके एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, जो हमें सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना सुरक्षा करना है, और यदि कहीं कुछ कमियां हैं तो वो हमको आगाह करते हैं कि अभी इस प्रकार का आप जल यूज ना करें, या यहाँ की मिट्टियों को आप पहले क्लियर कर लें फिर यूज करें। फिर उनका एक गाइडेंस होता है, निर्देश होता है, उसके आधार पर पे हम अपना कार्य करके उनका अपने कर्तव्यों को जानते हुए भी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।
1: और अंत में आपको सुन रहे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: जी मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें ऐसी चीजें हैं जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उनको हम रिसाइकल करके दोबारा यूज करें, जैसे कि कांच की चीजें हो गई है, इन्हें हम धो के फिर से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को यूज करने के बाद उसके बाद फेंक के कचरे का ढेर करें, तो इस तरीके से भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बारिश में हम एक पानी को इकट्ठा करके उन्हीं पानी का उपयोग हम किसी प्रकार सिंचाई या किसी अन्य चीज में भी उसको यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम पानी की बचत कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा, बहुत तेज आवाज की जो गाड़ियां हैं उनका उपयोग कम हो, बहुत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का उपयोग प्रतिबंधित हो, तो उससे भी हम अपने वातावरण को साफ रख सकते हैं और हम अपना एक स्वस्थ जीवन सुरक्षित वातावरण में जी सकते हैं।
1: धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।

सखियों, जीवन का आधार है स्वास्थ्य। सुबह उठें, नेचर वॉक पर जाएं, बच्चों को भी सिखाएं, पैदल चलने की आदत बनाएं, जो अभी समय चल रहा है ना, आपाधापी पेट्रोल की हर तरह मारा मारी, इन सब से दूर रहकर यदि आप पैदल की भी आदत बना लेना तो एक तरह का एक शरीर भी जो है कल पुर्जा है, एक मशीन ही तो है जिसको आप जितना चलाएंगे उतना ही यह स्वस्थ रहेगा। जैसे कोई मशीन होता है ना सीखो, तो यदि उपयोग नहीं करते तो जंग लग जाता है, उसी तरह मानव शरीर भी जितना सक्रिय रहेगा उतना ही स्वस्थ और ऊर्जावान होगा। बहनों, अब हम हर समय कैसे सक्रिय रह सकते हैं, आप समझ गई होंगी ना, कि साथ साथ मिलकर खेल कूद सैर योग करते रहें। किसके साथ? सखियों के संग, दोस्तों के संग। दोस्त भी हमें हमेशा ऊर्जावान रखते हैं, मानती हैं ना आप? सखी से यदि 2 मिनट बात भी कर लो तो मन हल्का होता है ना। अब कहती नहीं कि अरे कुछ हो जाए तो, अरे जिसको आप अपना खास मानते हैं उसको सुनाती है ना उस बात को। तो दोस्ती यदि सच्ची हो ना तो मानसिक तनाव से दूर कर देती है। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जो विश्वास, समझ और हंसी मजाक पर टिका होता है। विश्वास है ना, खुशी दोगुनी हो जाती है सखियों। दोस्ती एक दूसरे की व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ पल निकाल लेती है, होता है ना दोस्ती के लिए जरूर। तो साथ साथ वक्त बिताएं बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी खुशियां बांटना है ना, खुशियां ढूंढो मत, आपको नित प्रतिदिन नई नई खुशियां मिलती जाएंगी। दोस्तों के साथ भी की गई सामान्य बातचीत भी हंसी मजाक से आप सकारात्मक बना सकते हैं और उसमें ही आप जीवन आसान बना सकते हैं। ऐसे करके भी हम अपने जीवन को सफल और सुरक्षित कर सकते हैं। तो सखियों, अब मनोरंजन की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं एक गीत।

सखियों, चेहरे और सुंदरता की तो बहुत टिप्स लेते हैं, लेकिन आज सखियों के बीच प्यार, विश्वास और बॉन्डिंग की कुछ टिप्स ले लें, व्यवहारिक टिप्स। तो क्या है, सबसे पहली बात तो है खुला संवाद, क्वालिटी टाइम, सम्मान और सीमाएं, सच्चा समर्थन, सकारात्मक दृष्टिकोण। यदि आप इनको अपनाते हैं तो आपकी व्यवहारिक टिप्स पूरी हो जाती है। और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब कार्यक्रम को यहीं समेटें, तो इजाज़त दें महिला जगत कार्यक्रम से दिनेश्वरी राणा का, स्वीकारें नमस्कार।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे महिला श्रोताओं का कार्यक्रम महिला जगत, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब हम आपके लिए एक विशेष रेडियो रिपोर्ट लेकर आए हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर, तो सुनिएगा ये रेडियो रिपोर्ट।
1: श्रोताओं, प्रकृति हमारी सुरक्षा कवच देती है जीवन दान, जीवन दायिनी वसुंधरा को हमारा शत शत प्रणाम। श्रोताओं, हर वर्ष 5 जून को दुनिया भर में पर्यावरण को सुरक्षित रखने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अपने पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम ये चिंतन मनन करें कि प्रकृति हमें केवल देती ही

0: है, हम उसका निरंतर उपभोग करते हैं, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हरियाली के रूप में प्रकृति को कुछ लौटाएं और कुछ संसाधन बचाएं। इसलिए अपने प्रकृति के प्रति हम सदैव सजग और संवेदनशील रहें और अपने अपने स्तर पर हम यथासंभव पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में, जैव विविधता और वन्य प्राणियों के संरक्षण में अपना भरपूर योगदान दें। और आज इसी विषय यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर आधारित है हमारी आज की ये रेडियो रिपोर्ट, जिसमें हमने कुछ प्रबुद्धजनों के विचारों को लिया है। श्रोताओं, प्रकृति संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्पित जल एवं वन संरक्षण विशेषज्ञ दीपक एस राघव, जिन्हें जंगल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने अनमोल विचारों को हमसे साझा करते हुए कहा।
1: नमस्कार, मैं जंगल मैन ऑफ इंडिया, मैं काम करता हूं जल जंगल जमीन जन जानवर पर। विश्व पर्यावरण दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज जल जंगल जमीन जन जानवर के विषय पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि यह हमारा वास्तविक परिवार है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो केवल पेड़ पौधों की बात नहीं करते बल्कि 5 महत्वपूर्ण स्तंभों की बात करते हैं, जिसमें जल जंगल जमीन जन और जानवर शामिल हैं। जल जीवन का आधार, यदि जल है तो कल है, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी पर निर्भर है। आज जल स्रोत तेजी से घट रहे हैं, वर्षा जल से जल तालाब का संरक्षण और जल की सीमित उपयोग हमारी जिम्मेदारी है। सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी जल को बचाने का कार्य करें। दूसरा विषय है जंगल, जिसको धरती के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। जंगल हमें ऑक्सीजन, औषधियां, भोजन और जलवायु संतुलन प्रदान करते हैं। एक पेड़ केवल पेड़ नहीं होता, वह हजारों जीवों का घर होता है। जल बचेंगे तो भविष्य बचेगा, जल बचेगा तो कल बचेगा। फिर एक तीसरा संदेश सभी के लिए, जमीन अन्नदाता की शक्ति। स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ भोजन देती है। रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरता कम होती है। प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाकर हम अपनी धरती माता की रक्षा कर सकते हैं। सभी से मेरा प्रार्थना और निवेदन है कि सभी प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएं। चौथा मेरा विषय है जन समाज की भागीदारी। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का कार्य नहीं है। जब तक जन जन इसमें भागीदारी नहीं बनेगा, तब तक कोई भी अभियान सफल नहीं होगा। पर्यावरण का संरक्षण को जन अभियान से जन आंदोलन बनाना है। सभी से प्रार्थना है कि अपने गांव, शहर, कस्बे में इसको जन अभियान का रूप दें। एक मेरी प्रार्थना है, जो जानवर हैं प्रकृति के सहयात्री, वन जीव और पशु पक्षी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि जैव विविधता समाप्त होगी तो मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। इसीलिए प्रत्येक जीव के अस्तित्व का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी अपने यहाँ पे जल जंगल जमीन जानवर को बचाने की मुहिम चलाएं। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये संकल्प लें, जल बचाएंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, मिट्टी को रसायनों से बचाएंगे, वन्य जीवों और पशु पक्षियों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, जल बचेगा तो जीवन बचेगा, जंगल बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा, जमीन बचेगी तो अन्न बचेगा, जानवर बचेंगे तो प्रकृति बचेगी, और जब प्रकृति बचेगी तभी मानवता बचेगी। आइए हम सब मिलकर स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य खेती, सुरक्षित पर्यावरण और समृद्ध भविष्य के निर्माण का संकल्प लें। धन्यवाद। जय भारत, जय पर्यावरण, वंदे मातरम।
0: श्रोताओ, हमारे देश के भावी कर्णधार अर्पिता चौधरी ने भी पौधारोपण के प्रति लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करते हुए ये कहा।
2: आप लोग को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप एक पेड़ लगा के देखो, उसकी रक्षा करके देखो, और जब वो बड़ा होगा ना तो आप लोग को अंदर से खुद की खुशी होगी कि ये मेरा ही प्लांट था, मैंने इसकी अच्छे से रक्षा की। सो मेरे पास इतने सारे फूल हैं, फल हैं, सो मैं उसको इंजॉय करके खा सकता हूँ। तो आप लोग प्लांट लगाएं, उसकी रक्षा करें। सो प्लीज अपने नेबर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स सबको बोलो कि एक प्लांट जरूर लगाएं। हमारे देश में हरियाली भी है और खुशहाली भी है। सो प्लीज सेव
0: श्रोताओ, आगे इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण के मुख्य बिंदुओं पर विचार रखते हुए आप हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद, भारत के जैव विविधता पुरुष डॉक्टर भीकम चंद चौहान।
3: नमस्ते बालाघाट, बायोडायवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पर्यावरण केवल पेड़ पौधे, नदियों और जंगलों का नाम नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का आधार होता है। हम जो हवा लेते हैं, जो पानी लेते हैं, हम जो भोजन खाते हैं और जिस धरती पे हम रहते हैं, यह सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और

0: आज हम देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के जो क्षरण हो रहा है, जल संकट आ रहा है, भूमि क्षरण हो रही है, पूरा हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है प्रदूषित हो रहा है, जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। और हम देख रहे हैं कि विकास की दौड़ में हमने प्रकृति से जितना लिया है, बदले में उसे लौटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया है। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं, हम निरंतर बढ़ते तापमान से, अनियमित वर्षा से, सूखा, बाढ़, नई नई बीमारियों से और जलवायु परिवर्तन की विभिन्न आपदाओं को झेल रहे हैं। और इसका पूरा विकल्प यह है कि हम भारत की जैव विविधता को सुधारने में अपना योगदान दें। तो इस तरह हम भारत की जैव विविधता की दृष्टि से विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक मानते हैं। भारत हमारे जंगल, पर्वत, नदियां, वन जीव, लाखों प्रकार के पौधे, पृथ्वी की अमूल्य धरोहर है। लेकिन यह धरोहर तभी सुरक्षित रहेगी जब हम सभी इसके संरक्षण के लिए जिम्मेदारी से अपने स्तर पे कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज आवश्यकता केवल पर्यावरण बचाने की बात करने की नहीं है, बल्कि उसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने की है। प्रत्येक व्यक्ति यदि कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, जल, जंगल, जमीन के संरक्षण को अपनाए, रासायनिक प्रदूषण को कम करें तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो हम एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और हम संकल्पित हो कि केवल हम विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पौधों के बारे में, पर्यावरण के बात न करें, लेकिन प्रतिपल, हर समय, पूरे साल भर हम अगर पर्यावरण, प्रकृति के बारे में सोचते हैं, उसमें हमारा कुछ मनन होता है, चिंतन होता है, और उसको हम कार्य रूप में अगर हरा भरा पृथ्वी बनाने के लिए अगर काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। और एक किसान होने के नाते मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि किसानों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक खेती, जैव विविधता और जो बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी सजीव बनी रहे, और खास करके हरित कृषि, बीज संरक्षण, कृषि वानिकी जैसे अनेक मॉडल केवल पर्यावरण की रक्षा ही करते हैं, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि भी करते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि हमारा जो पूरा पर्यावरण है, पूरा हमारी जो जैव विविधता है, वो अगर स्वस्थ होगा तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ होगा। केवल यह एक नारा नहीं है, क्योंकि हम पर्यावरण दिवस के दिन नारे और जो मीडिया में हम अपने संदेश एक दूसरे को प्रसारित करते हैं, वो एक महज फॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सुरक्षित मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, इसके लिए हमें सोचना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। और आगे का जो मार्ग है हरित भारत और संकल्पित भारत, उसमें हम स्वस्थ भारत, शाश्वत खेती के संकल्प के साथ में हम प्रतिदिन जैविकता के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में चिंतन करते हैं। आइए इस वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम सभी एक संकल्प लें, प्रकृति का संरक्षण कैसे करेंगे, जैविकता का वो हम कैसे बढ़ावा दे सकेंगे, जल, जंगल, जमीन और जीवों की रक्षा कैसे करेंगे, और आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ, हरित और समृद्ध पृथ्वी को कैसे सौंप पाएंगे। हमें ये सोचना भी होगा और ये याद रखने लायक बात है कि अगर हम प्रकृति के मालिक नहीं है तो बल्कि उसके संरक्षक है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम प्रकृति को बिगाड़े, हम कोशिश करें कि उसके प्रतिपल संरक्षण के लिए हम संकल्पित हो। जय प्रकृति, जय पर्यावरण, जय बायोडायवर्सिटी।
1: श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी कदम संस्था की संस्थापक पर्यावरणविद, प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर छोटे छोटे सार्थक कदमों को अपनाने का संदेश देते हुए अपने उद्गार कुछ यूं व्यक्त किए।
2: नमस्कार, पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे मनाया जाता है। पहले समझे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण मतलब परिआवरण, हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द जो भी है वही हमारा पर्यावरण है। इसके दोनों ही घटक हैं, जीवित अथवा निर्जीव वस्तुएं। जीवित में मनुष्य खुद, जितने भी तरह के जीव जंतु हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, पेड़ पौधे और वनस्पति। और निर्जीव में आते हैं जल, वायु, मिट्टी, ये पूरा और भी जो हमारे इर्द गिर्द है वो सभी। याद रखिए, पर्यावरण के सभी तत्व जो हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर किसी भी घटक को हानि पहुंचती है तो उससे पर्यावरण पर भी उतना ही नुकसान होगा। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए और बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं के उपभोग के लिए पर्यावरण को दूषित किया है। आप देखते हैं रोज तरह तरह के केमिकल्स, चाहे वो कॉस्मेटिक के हों, चाहे फैक्ट्री से निकलने वाले हों, चाहे पेंट के हों, वो हमारी वाटर बॉडी में यानी जल में जाते हैं और वायु को भी प्रदूषित करते हैं। इसके साथ ही साथ जगह जंगल काटे जाते हैं विकास के नाम पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई

जाती है, तो इन सब से हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। अब अगर पर्यावरण दूषित है तो उसका नुकसान क्या होगा? सिर्फ एक शब्द में कहें तो पर्यावरण अगर असंतुलित हुआ तो पृथ्वी पर जीवन दूभर हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान उसके स्वास्थ्य पर है। उसका स्वास्थ्य कई बीमारियों से जूझेगा। अगर हवा ही प्रदूषित रही तो फेफड़ों की तरह तरह की बीमारियां होंगी। जल के प्रदूषण से उसका पाचन सही नहीं होगा, कई तरह के कैंसर होंगे और कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ेगा। और क्या नुकसान हो सकता है? अगर पर्यावरण दूषित इसी तरह से रहा तो इस असंतुलन के कारण जलवायु पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी हो रही है, और इससे आगे सूखा पड़ने की स्थिति आ सकती है, अनाज की कमी होने की आशंका हो सकती है, कई तरह की प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती हैं, जैसे कि तूफान, चक्रवात, सूखा पड़ना, बाढ़ आना। तो इस तरीके से हमने एक संक्षेप में समझा है कि पर्यावरण का संतुलन और संरक्षण क्यों जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं? एक अकेले व्यक्ति को लगेगा कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे कदम उठाऊंगा तो क्या ही फर्क पड़ना है, लेकिन विश्वास कीजिए, हर व्यक्ति द्वारा उठाया गया छोटा छोटा कदम सम्मिलित रूप से बहुत बड़ा असर डालेगा। बहुत छोटे छोटे काम करने हैं हमें, हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, पौधे लगा के छोड़ना नहीं है, उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लेना है। हम जितना कर सकते हैं उतना करिए। कई बार विकास के लिए या जरूरी भी हो जाता है जंगल काटना, तो बदले में हर नागरिक का कर्तव्य है कि उतने पेड़ लगा दिए जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें। पॉलीथीन कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, पृथ्वी पे सालों पड़ा रहता है और हमारी मिट्टी की उर्वरता को भी खराब करता है, और अगर उसे जीव जंतु खाते हैं तो उससे उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। बहुत सारी गाय और भैंसों की मृत्यु पॉलीथीन खाने से होती है। कम से कम केमिकल्स का उपयोग करें, पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो। पेस्टिसाइड का उपयोग और फर्टिलाइजर का उपयोग कम तभी होगा जब पृथ्वी की उर्वरता बनी रहेगी। पृथ्वी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भी पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमें ऊर्जा का संरक्षण करना होगा, व्यर्थ जल न बहाएं, व्यर्थ बिजली बर्बाद न करें, ईंधन का प्रयोग कम से कम करें, बहुत ज़्यादा विलासिता को न करें, सादगीपूर्ण जीवन जिएं, और जो 5 R सबको मालूम है मेरे ख्याल से, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिपर्पस, रीसाइकल एंड रीयूजेबल चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक की कटोरियाँ और ग्लासेस हैं उनका उपयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और हमें अपने लेवल पे भी उसे ख़त्म कर देना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे डिस्पोजेबल आ रहे हैं गन्ने की छाल के, पाम के पत्तों के, उनका उपयोग किया जा सकता है, या फिर रीयूजेबल कटलरी का उपयोग आप कर सकते हैं। बाजार जाते समय पॉलीथीन के बैग में चीज़ें ना लें, अपना थैला कपड़े का खुद लेकर के जाएं। आपको पता है ये जलवायु क्यों बदल रही है तेजी से? जलवायु के लिए दो प्रमुख जो घटक हैं वो है हमारे महासागर और हमारे जंगल। जंगल भी कट रहे हैं और महासागर प्रदूषित हो रहे हैं पॉलीथीन से, प्लास्टिक से और हमारे केमिकल से। इन समुद्र में जो बड़े बड़े समुद्र, उसके जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण कई तरह के चक्रवात आते हैं और मनुष्य के लिए जीना दूभर हो रहा है। अब हम आपको संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं कदम संस्था बालाघाट की। कदम संस्था बालाघाट 1 अक्टूबर 2017 से इसकी स्थापना हुई है बालाघाट में। कई गणमान्य नागरिक, कई समर्पित सदस्य जो प्रकृति के प्रति प्रेम रखते हैं, दया रखते हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उन्होंने इसका भार उठाया है। लोगों को प्रोत्साहित किया है कि अपना जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ पौधा लगाकर करें, और न सिर्फ पौधा लगाएं बल्कि उसका पूर्णतः संरक्षण करें। तब से निरंतर हर रविवार को, वैसे तो एक पौधा लगाना है पर कोशिश की जाती है कि मानसून में ज्यादा पौधे लगाए जाएं और उनकी पूरी तरह देखभाल की। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कदम संस्था बालाघाट ने अब तक 26,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं और उनका सर्वाइवल रेट 90% है। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है जो सभी लोगों को इस सहयोग से संभव है। ये एक अकेले का काम नहीं था, पर इसमें सबका भरपूर सहयोग मिला, और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े। कोई विशेष मौके पे लगाया जाता है ताकि एक भावना के साथ पौधा जुड़ जाए। विवाह की वर्षगांठ है, नौकरी में तरक्की मिली है, नई नौकरी मिली है, जन्मदिन है, तो आप पौधा लगाइए और अपना खुशी का इजहार करिए। और एक भावना के साथ लगाया जाता है कि जिस तरह प्रकृति प्रेम और आनंद का संदेश देती है, उसी प्रकार पृथ्वी में प्रेम, आनंद और सद्भावना का बीज या छोटा पौधा

0: बड़ा होके एक बड़े आकार का पेड़ बनेगा जो यही संदेश देगा। तो इस तरीके से ये सद्भावना का भी प्रतीक बन जाता है। कदम संस्था और भी काम करती है, जहाँ भी उन्हें पॉलीथीन का कचरा दिखता है पहले वहाँ की साफ सफाई भी करते हैं, कचरा उठाया जाता है ताकि लोगों को ये लगे कि कोई भी काम छोटा नहीं है और हर काम हर व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और उसे महानता का रूप दिया जा सकता है। कदम संस्था बच्चों के स्कूल में बीज भी बांटती है, एक पॉलीथिन में मिट्टी रखकर बीज बांटती है और उनको प्रोत्साहित करती है कि इस बीज में अंकुरित करें और पौधा बनते देखें। ये एक बहुत अच्छी पहल है बच्चों में एक रचनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करने का। हम देखते हैं आजकल के बच्चे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, ज्यादा टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो उन्हें प्रकृति से इसी उम्र में जोड़ने का और रचनात्मक प्रवृत्ति की तरफ उन्हें मोड़ने का ये बहुत ही अच्छा मौका होता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी प्रकृति के संरक्षण में, हमारे पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। आप अगर अपने लेवल पे पौधा लगाने में अक्षम हैं तो कदम संस्था बालाघाट से संपर्क करिए और उनके साथ मिलकर पौधा लगाइए, अपने जन्मदिन पर पौधा लगवाइए और प्रकृति संरक्षण में योगदान दीजिए। धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ कि अपने घर का कचरा गीला और सूखा अलग अलग रखें। गीले कचरे से घर में भी खाद बनाई जा सकती है, इससे आपको खुद को बहुत अच्छा अनुभव होगा। कभी भी कचरे को, पॉलीथीन को, जो भी कचरे या सूखे पत्ते हैं उन्हें जलाएं नहीं। उससे सूखे पत्तों में उपस्थित कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो नुकसान करती है, पर अगर सूखे पत्ते हैं उसको हम जमीन में दबा दें तो उसका कार्बन मिट्टी के लिए बहुत अच्छे उर्वरक का काम करता है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने विचार रखते हुए आप हैं हमारे साथ गृहिणी।
2: नमस्कार, मैं हूं आशुमी रानी, अमरावती महाराष्ट्र से। पर्यावरण दिवस पर मैं कुछ आपसे कहना चाहूंगी जिससे शायद सब लोग कुछ सजग हो जाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती माँ को हरा भरा बनाएं। तो ये जो हम पर्यावरण, हमें उसको संभाल कर रखना है, जैसे कि आने वाली हमारी पीढ़ियां भी कुछ सुरक्षित रहें। कहीं भी हम जाते हैं घर से बाहर या किसी भी सार्वजनिक जगह पर, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वहाँ कचरा नहीं फेंकना है, और अगर पड़ा भी है तो उसको हम उठाकर एक जगह रखें। और डस्टबिनों का उपयोग अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत किया है कि बस डस्टबिन लीजिए या फिर गाड़ियां आती है उनमें डालना चाहिए हमको कचरा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी पर्यावरण को संरक्षित कीजिए, स्वच्छ रहेंगे हम, आजू बाजू हमारा पर्यावरण सही रहेगा तो हमें बीमारियां भी नहीं होंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। अगर कुदरत ने हमें पर्यावरण की नियमत बख्शी है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये जो चीज़ें हैं ये कुदरत के तरफ से हमको मिली है, लेकिन मिलना एक बात नहीं है, हमें उनको संरक्षित करके रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कई संस्थाएं इसमें आगे भी जुड़ चुकी हैं जो वृक्षारोपण करवाती हैं, लेकिन सिर्फ वृक्षारोपण करना ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है, उनको टाइम से खाद पानी दीजिए। जैसे वो पेड़ बड़े होंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन बढ़ेगा और बाकी चीज़ों की भी हमारे लिए, उन पेड़ों से खुशहाली आती है, छांव मिलती है हमको, हमारे बच्चे कुछ सीखते हैं। तो अपन अगर उसको कुछ अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फायदा है। जैसे बोलते हैं पर्यावरण बचाओ भविष्य संवारो, पेड़ लगाओ प्रदूषण भगाओ, हरियाली है जीवन की खुशहाली, तो हम इन नारों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारे पर्यावरण के लिए हम बहुत अच्छी तरह सुरक्षा कर सकते हैं और अपने सेहत को भी अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित साफ सुथरा रहेगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। जल को भी हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं पूजा सामग्री या घर की गंदगी जल में बहा देते हैं तो वो जल प्रदूषित हो जाता है जिससे कि हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम उसको अगर सुरक्षित रखते हैं, और वायु का भी जो प्रदूषण है, जैसे अभी बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं या बाकी लोग भी कैसे करते हैं भाई, गंदगी कचरा बाहर फेंक देते हैं, उससे बदबू होती है, वायु दूषित होती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, अनेकों बीमारियां होती हैं। प्रदूषण का एक कारण और भी है, जैसे हमारी जो ये गाड़ियां हैं हम लोग भाई ऑन ही रखते हैं सिग्नल पर, उससे भी प्रदूषित होता है। हमें अपनी गाड़ियों को चेक करवाते रहना चाहिए, वो धुआं जो छोड़ती हैं तो उस कारण प्रदूषण बहुत होता है। फैक्ट्रियां हैं उनका भी जो कचरा निकलता है या उनसे भी जो धुआं उठता है उससे भी, कि उनकी गंदगी नालों के जरिए हमारे पेयजल में ना जाए या नदियों में जाके ना मिले, और धुएं से जो वातावरण दूषित होता है वो नहीं होना चाहिए। तो आप सब खुद समझदार हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं, शायद आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इस प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। या हॉर्न ना बजाएं तेज, बहुत ज्यादा तेज हॉर्न बजाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती।

0: ये जो हमको सही जीवन सही दिशा देती हैं, अगर हम खुद उनका ध्यान रखेंगे तो हमारा वातावरण और शुद्ध होगा, पर्यावरण और सुरक्षित रहेगा, जिससे जनजीवन सामान्य रहेगा। हम इन चीजों का ध्यान रखें कि जल वायु आजू बाजू का वातावरण ये सुरक्षित रहे, तो हम निरोगी काया से स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ भारत ही आगे बढ़ सकता है, रोग मुक्त ही लोग हमारे अच्छे भारत की स्थापना कर सकते।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी बालाघाट के कार्यक्रमों द्वारा प्रेरित प्रोत्साहित हमारे नियमित श्रोता समाज सेवी हट्टा निवासी शीला पटले ने स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देते हुए दिवस विशेष पर अपने उद्गार कुछ यूं व्यक्त किए।
2: नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी शीला पटले। सबसे पहले मैं आकाशवाणी बालाघाट की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं और आपसे ही प्रेरित होकर मैं 10 वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में अनवरत रूप से कार्य कर रही हूं, जिसमें मुख्य रूप से वेस्ट पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता, स्वच्छता, वृक्षारोपण और जल संरक्षण है। सबसे पहले मैं वेस्ट पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के प्रति बताना चाहती हूँ कि वेस्ट पॉलीथीन अगर हम जलाकर नष्ट करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम अनुमान लगाएं कि थोड़ी सी पॉलीथीन भी अगर प्रत्येक घर से जलकर नष्ट होती है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन से ही हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। फिर हम बात करें वृक्षारोपण की। वृक्षारोपण के क्षेत्र में नियमित रूप से पूरे वर्ष भर हम सामूहिक रूप से वृक्षारोपण करते हैं और उसके सुरक्षा के लिए भी हम विशेष रूप से कार्य करते हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास 2 PWD के कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से हमारा वृक्षारोपण जो है उस पे मुख्य रूप से काम चलता है। और उसके बाद अगर हम जल संरक्षण की बात करें, जल जो है हमारे लिए बहुत संकट पैदा कर रहा है। हमारा दिनों दिन जो पानी है वो भूमिगत जल स्तर बहुत गहराई में जाते जा रहा है। उसको लेकर के जनता को जागरूक करने के लिए मैंने अपने घर में स्वयं वाटर हार्वेस्टिंग बनवाई हूँ और जहाँ कहीं पर भी गृह निर्माण होता है उनको वाटर हार्वेस्टिंग करवाने के लिए मैं प्रेरित करती हूँ। अभी वर्तमान समय में भारत शासन की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से लेकर 5 जून तक लगातार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हूँ। अभी विद्यालय बंद होने के कारण बच्चे जो है कोचिंग सेंटरों में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं कोचिंग सेंटर में जाकर अभी युवाओं को मैंने प्रेरित किया कि अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, अपने घरों में शौचालय की नियमित स्वच्छता बनाए रखें और घर के आसपास जो नालियां होती है उन नालियों में कचरा न डालें, इसके लिए प्रेरित किया। और बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से मैंने आगे आने के लिए बच्चों को प्रेरित किया, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिए। और मैंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही युवाओं को थैले बांटे और उन्हें बताया कि हम दुकानों में अगर जाए सामान लेने के लिए तो अपने साथ में थैला लेकर ही जाए। और जो पैकेजिंग में जो पॉलीथीन आती है उसे तो हम नकार ही नहीं सकते। जब वो पॉलीथीन हमारे घर में आती है उसको जलाने से रोकने के लिए मैंने बहुत बड़ा जागरूकता कार्यक्रम किए। और अभी हमने वर्तमान में इस गतिविधि के दौरान जहाँ जहाँ पर गांव में चौक चौराहा पर वेस्ट पॉलीथीन पड़ी हुई थी, उस पॉलीथीन को उठाकर हमने इकट्ठा किए और जनता को जागरूकता का संदेश दिए कि अपने घरों के आसपास स्वच्छता बना के रखें। और मैं बताना चाहती हूँ कि हम सभी ने अपने आप को प्रकृति का ऋणी समझना चाहिए, तभी हमारे मन में प्रकृति का ऋण चुकाने की भावना जागृत होगी। मैं अंत में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। जरा सोचो अगर ये पेड़ न होंगे, जरा सोचो अगर ये पेड़ न होंगे, हवा न होगी, ये नदियाँ न होगी, तो इस जहाँ में फिर सांस लेने को क्या बच्चों के लिए कोई जगह न होगी। आओ मिलकर बचा ले ये धरती, ये बाग, ये बहार, ये नमी, कि कल जब हम न होंगे तो ये दुआ देगी हमारी आने वाली जिंदगी, तो ये दुआ देगी हमारी आने वाली जिंदगी। धन्यवाद।
1: आगे इसी कड़ी में अपने विचारों को लेकर आप हैं कदम संस्था के सक्रिय सदस्य मोती मांदरे।
3: आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस समय में आप देख रहे हैं कि तापमान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इस तापमान को देखते हुए आप सभी से एक ही निवेदन है कि हर व्यक्ति अगर एक पौधा लगाए और उसकी सुरक्षा करे तो हमारे देश में ऐसे दिन देखने को नहीं मिलेगा और पर्यावरण

0: भी शुद्ध रहेगा, जलवायु भी बनी रहेगी और हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। हम संस्था से 12 महीने सुबह 6 बजे से लेकर 10-11 बजे दोपहर तक प्रतिदिन पौधों में पानी, गुड़ाई, खाद देने में हर समय डटे हुए रहते हैं। पौधे की सुरक्षा के लिए फेंसिंग और टी गार्ड सुरक्षा की दृष्टि से हर पौधों में लगाया जाता है ताकि पौधे सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। मल्चिंग भी करते हैं रोज, पत्ते भी डालते हैं कि जिससे कि पानी की नमी बनी रहे। इस उद्देश्य से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी देशवासियों से एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और देश बचाएं। जय हिंद, जय भारत।
1: आगे इसी कड़ी में दिवस विशेष पर अपने विचारों को लेकर आप हैं शिक्षिका रिया पसरीचा।
2: विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है प्रकृति की। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति जिसने हमें जन्म दिया है और उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, सभी श्रोताओं गणों को ये बताना चाहूंगी कि प्रकृति जो है, जिसने हमें जन्म दिया है, इसकी सुरक्षा के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, एक अवेयरनेस रखनी है और इस अवेयरनेस के थ्रू हम प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, प्रकृति की सुरक्षा आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने लेवल पे बताना चाहूंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं डेली इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं मार्केट जाऊँ तो सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक को यूज ना करके एक छोटा सा बैग अपने साथ हमेशा रखूँ, और अपना जो मार्केट से जो भी परचेसिंग कर रहे हैं वो प्लास्टिक का यूज ना करके उस बैग को यूज करूं। उसके अलावा मैं अपने घर में हमेशा ये ध्यान रखती हूँ, वेजिटेबल्स के जितने भी छिलके होते हैं, जो कचरा यूज किया जा सकता है जैविक खाद के लिए, उसको मैं यूं ही ना फेंक कर उसका जैविक खाद बनाऊं। साथ ही साथ हमेशा इस बात का भी ध्यान रखती हूँ कि जब भी हम पानी का यूज कर रहे हैं तो बंद होते वक्त, ब्रश करते वक्त पानी को वेस्ट ना करें, नल को बंद रखें, जब जरूरी है तभी नल को यूज करें। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कचरा जो है वो प्रकृति के लिए कितना नुकसानदायक है, तो यहाँ पर भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब भी हम कभी बाहर सफर में जाएं, पिकनिक के लिए जाएं, किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर हम जा रहे हैं, तो ये हमारा एक छोटा सा काम होता है कि हमें कचरे को इधर उधर ना फेंक कर उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए, या फिर उसे किसी ऐसी जगह पर निष्कासित करें जो प्रकृति के लिए हानिकारक ना हो। आज के शुभ दिन पर मैं एक सजेशन और देना चाहूंगी कि जैसे कि हम टिश्यू पेपर का बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं आजकल, तो टिश्यू पेपर का यूज जो है वो कम से कम करें, क्योंकि टिश्यू पेपर को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है और बहुत ही अधिक मात्रा में पानी का यूज होता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और इस धरती को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि जब तक है धरती पर हरियाली तब तक ही संभव है खुशहाली।
1: श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस पर ही जल संरक्षण का संदेश देते हुए आप हैं जिला उपभोक्ता संघ और कदम संस्था के सदस्य चीनू जैन।
3: पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: धन्यवाद। मैं अपनी जिला तैराकी संघ और कदम संस्था से जुड़ा हुआ हूं, और जिला तैराकी संघ बजरंगघाट परिसर में पूरा वनों का हम लोग संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, साथ ही हम नदी का संरक्षण भी करते हैं और वनों के लिए हम बहुत देखभाल करते हैं, और बारिश के समय में हम छोटे छोटे पौधे भी लगाते हैं और उसको साल भर हम उसमें पानी देते हैं, और किसी भी लोगों के द्वारा हम उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हम उसको रोकते हैं ताकि कोई हमारे वनों को नुकसान ना पहुंचा सके। हमारी संस्था के द्वारा पौधों को गोद भी लिया जाता है, उनको लगाया जाता है और उसके बाद उसको पालने का काम भी हम लोग करते हैं, और समय समय पर हम उसका कटाई करते हैं, छटाई करते हैं और साफ सफाई, खाद डालते हैं, उसमें गुड़ाई करते हैं और उसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं बजरंगघाट परिसर और हमारे फॉरेस्ट वन में।
1: तो पानी को संरक्षित करने के लिए आप लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं?
3: सबसे पहले तो पानी को संरक्षित करने के लिए हमको पानी को शुद्ध करना जरूरी है, और उस पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग बजरंगघाट स्थित वैनगंगा नदी की सफाई अभियान करते हैं। हम लोग पानी को साफ सफाई करते हैं, जाले निकालते हैं, और वहां पर हम किसी भी तरह का पूजन सामग्री का विसर्जन और किसी भी तरह की गंदगी फैलाने के लिए लोगों को हम रोकते हैं ताकि कोई हमारे पानी को दूषित न करे।
1: तो श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो भी किस तरह इस दिशा में जागरूक हो सके?
3: श्रोताओं के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप भी, हम सब मिलकर पौधों को जीवन दान दें, उसे बड़ा करें, उसको पाले पोसे और उसकी छांव में रहें, तो जो आनंद हमको हरियाली में आएगा वो हमको और कहीं नहीं आ सकता। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमारे तैराकी संघ, हम लोग कोशिश करते हैं कि जंगल का पानी जंगल में ही रहे, बहने न जाए, उसके लिए हम लोग छोटे छोटे नाले

0: रहते हैं उसमें हम पत्थर डाल के पानी को रोकने का कोशिश करते हैं ताकि जो जानवर है उनको पानी मिल सके और पानी संरक्षित रह सके और उन पौधों के जीवन के लिए पानी अत्यावश्यक है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पौधों को बचाएं, पानी को शुद्ध रखें ताकि हम आगे अपने जीवन को अच्छा बना सकें। पानी को बचाने के लिए सबसे पहले हमें पौधों को लगाना आवश्यक है। नदी किनारे हम पौधे लगाएंगे, पेड़ बनेंगे वो, और वो हमारे मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। और मिट्टी के कटाव को जब रोकेंगे तो पानी हमारा संरक्षित रहेगा, पानी से बाढ़ आने की संभावना कम रहेगी। तो उसके लिए हम सबको मिलकर पानी को बचाना है तो कम से कम जंगल बचेगा, और जंगल बचेगा तो हमारे पशु पक्षी प्राणी बचेंगे। हम सबको सामने आना होगा ताकि हम अगर सामने आएंगे तब हम ये सब काम को कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। और हम अगर एक पौधा भी लगाएंगे और उसको पाल के बड़ा करेंगे तो जो हमें हरियाली और हमें जो सुख शांति महसूस होगी, तो हम चाहते हैं कि ऐसी सुख शांति हम अपने देश में लाएं और पूरे देश को हरा भरा कर दें और पानी को हम सुरक्षित करें, संरक्षित करें। सभी देशवासियों से निवेदन है कि हम हमारे शहर में जो भी नदी तालाब पड़ते हैं हम उसका सम्मान करें और ताकि लोगों को रोकें, हम पानी को स्वच्छ रखें, हम उसमें गंदगी ना करें।
1: तो श्रोताओं, ये थे विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रबुद्ध जनों के विचार। तो निश्चित तौर पर आप ही जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण संग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वन्य पशु पक्षियों की रक्षा करते जाएं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण मुक्त देश बनाएं, स्वस्थ भारत सुरक्षित पर्यावरण का बीड़ा उठाएं और जन जन का भविष्य सुरक्षित करते जाएं। इसी उम्मीद के साथ संपन्न होती है आज की ये रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं संकलन शालू गांधी का और प्रस्तुति सहायक निदेशक कार्यक्रम कुंवर विक्रम सिंह की।
2: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये रेडियो रिपोर्ट विश्व पर्यावरण दिवस पर। आलेख और संकलन शालू गांधी का था और प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की थी। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:32 हो चुके हैं और अब हमारा अगला प्रसारण जो होगा
3: एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

नीरजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती हैं।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

0: कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।
1: फर्राटे वाला।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन

के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर, क्रिटिक्स अवार्ड, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है, उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, अब से कुछ ही देर में।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरा लाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने निमाड़ंचल को बड़ी सौगात देते हुए 4,415 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत एनएच 347 पी के हिवारखेड़ी रोशनी आशापुर रूधी मार्ग को टू लेन और देशगांव जुलवानिया मार्ग को फोर लेन में अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना से खंडवा बैतूल खरगोन बड़वानी जिलों में यातायात सुगम होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हाल ही में वनग्राम आवलिया में वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व कालीभीत परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र सिंह अचालिया ने युवाओं से अपील करते वे कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। युवा कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले ने राष्ट्रीय स्तर

0: पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम खंडवा ने 20,490 कंटूर ट्रेंच बनाकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जिले ने ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कर देश में पांचवा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य प्रियंक कानून को आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे खालवा और खंडवा में मानवाधिकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खंडवा में आयोजित जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को उर्वरक वितरण के ई टोकन सिस्टम की जानकारी देने और पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गत दिनों खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। इस परियोजना से 160 आदिवासी महिलाओं को मछली पालन, पशुपालन, बतख पालन और फल सब्जी उत्पादन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित और गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग करने की अपील की है। विभाग द्वारा खाद और बीज की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है और नमूनों की जाँच भी कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जिले भर में मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खंडवा में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेगण की उपस्थिति में 60 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रथम बैच को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार और कृषि आधारित उद्यमिता की जानकारी दी गई है। वहीं श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों से 13 जून तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। उधर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर माणिक के स्मारक वाचनालय में संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। खंडवा जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान और नमो वन क्षेत्र में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार सीड बॉल के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है। मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए मध्य प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्य खेत पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी खंडवा जिले की चिट्ठी, आलेख हीरालाल लोंगरे का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं और ये वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म निकाह से इसे हमने लिया है। आवाज़ सलमा आगा की है, गीत के बोल हसन कमाल के और संगीत रवि का है।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। संगीत राजेश रोशन का है और गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं एक सूचना, आज शाम 6:30 बजे सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। समय याद रखिए आज शाम 6:30 पर। श्रोताओं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको अगला नगमा सुनवा रहे हैं। फिल्म इम्तिहान से इसे हमने लिया है। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज किशोर कुमार की।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सफर यहीं तक। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। श्रोताओं, आपके लिए एक सूचना, आज शाम 6:30 बजे सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम। समय याद रखिए, आज शाम 6:30 पर अवश्य सुनिएगा ये विशेष कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अब हम सुनवाते हैं आपको NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नमस्कार, वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं।
1: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
1: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मीराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं कि वहाँ रेत ही हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
1: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गाँव में सरकारी प्राथमिक स्कूल है। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भोटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गाँव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
1: जी,
0: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी,
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुँचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक

0: सबंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का

0: की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गाँव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गाँव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्र

0: तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा चार की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: कोई ना कोई वजह होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है।
3: अच्छी बड़ी तो बहुत अच्छा है।
4: शांत।
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
5: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
2: जी
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी

0: आवाज में बातें करने लगे। भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
1: मुझे भी नकली मिला।
2: मुझे भी कैसे हो सकता है
0: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम्हारे क्या कुछ हो सकता है? राजा था
1: राजा, नकली ही ना तो सकता।
2: नकली कैसे आ गया?
0: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया।
1: राजा ने
0: भी ने बोला कि नकली है।
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज।
3: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
4: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
3: क्या? और कोई शंका?
4: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
3: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
5: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
3: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चल

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल,
4: पोंगलो पोंगल,
5: पोंगलो पोंगल।
3: उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार

लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। श्रोताओं, आपके लिए एक सूचना, आज शाम 6:30 सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। जी हाँ, यह विशेष कार्यक्रम है और समय याद रखिएगा, आज शाम 6:30 पर। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजने ही वाले हैं और अब हमारा अगला अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जी हाँ, सुनिएगा विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में।

0: और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
2: रंग

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।
0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी। एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम ख़त्म होता है। रंग

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित

0: कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी की आवाज से, साहिल उद्यानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म मन की आंखें।

ममता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन। ये दूसरा आदमी फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो।
1: हाँ।
0: सावधान रहना।
1: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
0: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
1: अच्छा।
0: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
1: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
0: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
1: तो
0: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
1: अच्छा,
0: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
1: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
0: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
2: सखी सहेली।

नजराना तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना यार के हंसते ही

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कामजोर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंडीवर के बोल थे। डाक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: डाक फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।

0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहेब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। इस कार्यक्रम का स्वरूप तो आपको पता ही चल चुका है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम संक्षेप में बता देते हैं। वैसे ये जो इबारत लिखी जाती है, आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कविता। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ ली है और लिखा भी है कि आज की इबारत में तो कविता है। भाई, कविता थोड़ी कठिन है, मुश्किल हो रहा है अंदाजा लगाना, तो यही तो बात है। पहेली अगर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए तो वो पहेली ही क्या। तो चलिए हम वो इबारत पढ़ देते हैं कविता की शक्ल में। वो थी पहाड़ों वाली लड़की, चीड़ और देवदार की छांव में पली, बुरांश के फूलों सी दहकती, किसी खूबसूरत झरने सी चंचल। पेड़ पौधों और जंगलों के बीच वो हिरनी सी भरती कुलाचे, पगडंडियों पर उसके पांव पड़ते तो धरती के आंचल में एक मधुर कंपन जाग उठता। खुली वादियों में चलते हुए वो देखती एक ख्वाब, नीले अंबर के पार वो देखती तो बारिश की बूंदें जैसे प्रेम की माला पिरोती। प्यार के राग पर वो गुनगुनाती, जहां बादलों के पंखों पर बैठकर मन उड़ने लगता। वो आसमान की ओर निहारती, कहीं दूर बादलों की आग छलक पड़ती। बारिश उतरती पहाड़ों की देह पर तो झरने नदी का हाथ थामे गुनगुनाने लगते कोई खूबसूरत गीत। हवा उसकी जुल्फों को सहलाकर गाती कोई सुरीला नगमा, और जब उसकी जुल्फें पवन के संग थिरक उठती तो घाटियों में गूंजता प्रेम का दर्द भरा राग। उसकी आंखों में उतरकर रच देती सिंदूरी कविताएं, वो फूलों से नहीं उनकी खुशबू से प्रेम करती थी। नदियों से नहीं उनके सफर से, और आकाश से नहीं उसकी असीम उम्मीदों से, उसके दिल में अजब सा संसार था। एक पूरा जंगल सांस लेता था उसके दिल में, नदियों का संगीत, पहाड़ों की चुप्पी। वो थी पहाड़ों वाली लड़की जिसकी

सी में झरनों की कलकल थी, जिसकी आंखों में बादलों की नमी थी। अब भाई बहुत सारे शब्द मिल गए आपको, तो आज तो ऐसे लगता है कि शब्दों की माला पिरोई जाएगी और ढेर सारे शब्द होंगे, उसमें मुझे ही मुश्किल पड़ जाएगी कि कौन सा वाला गाना सुनवाएं कौन सा वाला नहीं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनिए और देखिए कि इसमें कौन सा शब्द आया है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म, मोहम्मद रफी की आवाज़।

तो भाई ये गाना आपने सुना, फिर वही दिलाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और ज़्यादातर श्रोता ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ममता जी इस कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार आई हैं और कहाँ गायब थी। भाई गायब तो कहाँ थे, हम तो ऑन एयर होते थे और आपसे गुफ्तगू होती थी, अभी हाल में सजीव प्रसारण आपने देखा हिमानी जी के साथ, गायब कहीं नहीं थे, बस थोड़ी सी मसरूफियत हो जाती है तो कुछ प्रोग्राम छोड़कर कुछ नए प्रोग्राम करने पड़ जाते हैं। बहरहाल चलिए ये टिप्पणी हम पढ़कर सुनाते हैं। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत एक खूबसूरत कविता है, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता रच देती हूँ, साझा कर देती हूँ। इन्होंने आगे लिखा है कि बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे याद नहीं इसके रचयिता कौन है। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। जहां दिन भर महुआ पर झूले, रात को चुपड़ते हैं फूल। जहां दिन भर महुआ पर झूल, रात को चुपड़ते हैं फूल। बांस के झुरमुट में चुपचाप जहां सोए नदियों के कूल। भरे जंगलों के बीचों बीच न कोई आया गया जहां, चलो हम दोनों चले वहां। विहग मृग का हो जहां निवास, जहां अपने धरती आकाश। कविता आगे भी इन्होंने लिखी, काफी लंबी है और बहुत सारे श्रोताओं की चूंकि टिप्पणियां आ रही

तो हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में लिखें ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि आज इबारत रूपी कविता बहुत पसंद आई, पर्यावरण दिवस की झलक दिख रही है, आपको नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि हर पंक्ति गुनगुनाते हुए बता रही है आज के सुंदर सुहाने सफर में एक खूबसूरत लड़की पहाड़ देवदार के बगीचे में बहार के झरना नदी चंचलता नीले नंबर अंबर चांद जवाए हमको तरसाए बारिश देह पर पड़ते टिप टिप बरसा पानी वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। मतलब इतने सारे गानों के बोल लिख डाले हैं कि अब हमें मुश्किल पड़ रही है कि पूरा कैसे पढ़ें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की काव्य रूपी इबारत विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है। इबारत में काल्पनिक पहाड़न युति का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें कहीं प्रकृति की छटा भी है, लेकिन कहीं उन जो वो लड़की है ख्वाबों वाली पहाड़ों वाली लड़की, उसके साथ जो शब्द हैं उन शब्दों पर गाने लिए गए हैं। और उस इबारत से आपके मन में जो कविता आ रही है वो भी आप लिखिए, और आपके जहन में जो गाने आ रहे हैं वो भी सुझाइए, हो सकता है आपका गाना हम शामिल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुमराह फिल्म का गाना सुनवाते हैं। तो बताइए कि इस कविता से कौन सा वाला शब्द इसमें शामिल है। हाँ, पिछले गाने में शाम शब्द आया था जो हमने चुना था, वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है, और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। जरा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम की टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहें तो रोज एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, जरा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्ची में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्ची में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी वातावरण वाली आवाज, मीठी आवाज। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थीं और फिजाएं थीं और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जरा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफर में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले, तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम, और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ खास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2x4 बताइए, किसकी है आवाज़, किसका है संगीत और किसका है गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी ज़रा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गुलजार गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं, तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो

दिल्ली कठक फिल्म का गाना आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है।

0: नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।
1: मेरू

0: गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार, पेड़ पौधे, नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं। गाँव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी। वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: मर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

बंधे हुए थे। सबके सब कहाँ खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहाँ हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियाँ हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, ज़रा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था। और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी की बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं।

हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी, ये गाना, और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुन

आ चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए। पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफ़र में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था, हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 31वीं कड़ी।

बंगाल में पद्मा और मेघना इन दो नदियों के संगम पर बसे बारिसाल शहर में कांग्रेस के युवाओं का अधिवेशन 14 और 15 अप्रैल 1906 को आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के लिए अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, भूपेंद्रनाथ बसु, मोतीलाल घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे अनेक नामी गिरामी नेता आने वाले थे। अश्विनी कुमार दत्त की पहल से इस अधिवेशन में हजारों युवक बड़े उत्साह से शामिल होने के लिए बारिसाल की ओर आ रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त कवि भी थे। बारिसाल के इस अधिवेशन के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कविता रची थी। आए रे सब भारतवासी, आए सब मिले, प्रणामी भारत माता चरण कमले।

सब भारतवासी आओ, सब मिलकर भारत माँ के चरणों में शीश नवाओ। आओ आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का कोई झगड़ा नहीं है, मिलकर करें वो कार्य जो सही है। इसी धूल में है श्री राम हमारा और इसी धूल में है अकबर तुम्हारा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गीत लोग गाने लगे थे।

पेड़ों की छाओं में शीतलता है, फूलों की खुशबू में जीवन का उत्सव है। जब वृक्ष खिलखिलाते हैं तब जीवन गुनगुनाता है। नदियों की कलकल, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान, यही तो वो संगीत है जिसके सुरों पर जीवन मुस्कुराता है।

0: telling lies? No, Papa. Open your mouth.
1: तो श्रोताओं, फूलों की सुगंध, बादलों की छांव और वृक्षों का स्नेह मनुष्य को मिलता रहे, इसी कामना के साथ आइए संकल्प लें कि धरती को हम उतना ही सुंदर बनाकर रखें जितनी सुंदर ये हमें विरासत में मिली है। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं। सूरत में वे 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं शाम को दमन में नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और नामो अस्पताल सहित करीब 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एयर ट्रंक कंपनी भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में और मजबूत होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी पौधरोपण, संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई। अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ सूर्योदय देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में माचना नदी घाट पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रायसेन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण किया गया, जबकि गुना में एनसीसी इकाइयों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं सतना के बगहा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में 9 जून से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। करते हैं मौसम का। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ में सुबह तेज बारिश हुई, जबकि सीहोर, रायसेन और कई अन्य जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केरल में मानसून 4 जून को पहुंच चुका है और प्रदेश में मानसून के 20 से 22 जून तक के बीच दस्तक देने की संभावना है। कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है संदेश के साथ एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंका अनुंगो ने नर्मदापुरम प्रवास के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बैंक ऋण से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम 3.0 के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में स्नातक 18 से 30 वर्ष तक के युवा 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई को होगी। और प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उसके उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि छोटे तालाब जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव

0: सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं।

0: और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
2: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का

0: उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में फिल्म थी गंगा मैया तुहें पियरी चढ़ई बो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुवर

0: साहेब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह, अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, कानपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर से ही अपना बुटीक है मेरा, सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा गाना है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: स्वाति सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंदा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी, अच्छा तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और
1: हाँ मैम,
0: तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम बैठी है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने
1: जी
0: का?
1: मैम मिल जाता है मैम, आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज़्यादा। और आप अच्छे
1: यस
0: से अपनी
1: मैम,
0: पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप
1: यस
0: अपने
1: मैम।
0: पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं
0: कौन बोल रहा है?
1: बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं आप?
1: पढ़ाई तो खत्म है, मेरे कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी, 10वीं
0: अच्छा,
1: पास।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उनकी याद में एक गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं,
0: जी
1: मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत,
0: बढ़िया,
1: और दिन में धूप में तो निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा,
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो सब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मैम, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से
1: मैं
0: शहर से।
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से। जी
0: अच्छा रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी आप क्या करती हैं।
1: मैं मैम हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा तो
1: जी
0: आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है,
0: अरे
1: बहू
0: वाह,
1: भी हूँ।
0: यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना।
1: जी जी मैम अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ हैं, कड़क वाली कि अच्छी वाली।
1: नहीं,
0: नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं।
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना तो समझिए फिर तो
1: जी
0: आप
1: मैम
0: थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी
1: जी
0: थोड़ा बहुत रहता है ना वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल
0: अच्छा
1: जी
0: आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: जी मैम अच्छा लगता है उनके साथ। और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की
1: जी
0: सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा
1: जी।
0: गीत सुनना चाहती हैं।
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। तू
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
1: कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप
1: हाँ
0: क्या
1: जी,
0: करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: वो तो संभालना ही जरूरी है ना, घर में तो सबसे, मैंने
0: बिल्कुल
1: सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है।
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ।
0: जी, तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह
0: अरे
1: से
0: वाह।
1: मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता है, भूले बिसरी संगीत सविता, भूले बिसरी गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता है, सुन किचन में चलता रहता हूँ, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर
1: हाँ
0: रुचि है ना
1: और
0: आपकी, तो समझिए आपका जीवन
1: हाँ
0: बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है।
0: ये अच्छी चीज
1: और
0: है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम
0: जी,
1: 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह।
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, और मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात
1: हाँ,
0: कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीहर जो है जबलपुर का है, तो
0: जी
1: हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहां पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियां, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि
0: जी
1: मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते बजवाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनूंगी गागो साइड खान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: अच्छा गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपको बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओह, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: मुझे डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपने मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे
1: हाँ
0: ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताज़ा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती क्योंकि हम इतने ज़्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी
1: जी,
0: परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो आप
1: बीमारी सही कर दे, डांस और
0: बिल्कुल
1: म्यूजिक तो ऐसी चीज है।
0: जी एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज
1: जी,
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको
1: हाँ
0: सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ,
0: हाँ
1: रत्ना सिन्हा,
0: अच्छा, रत्ना जी बोल रही हैं। कहाँ से?
1: बाराबंकी से
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउसवाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउसवाइफ है क्योंकि हाउसवाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है,
1: जी।
0: और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके ऊपर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जो
0: बिल्कुल।
1: है,
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है छोटी
0: बहुत बढ़िया
1: सी
0: तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से
1: जी।
0: तो
1: समय
0: बताइए
1: बीत
0: जी, तो आप बताइए,
1: जाता
0: आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी। बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते
0: अच्छा
1: हैं,
0: अच्छा आपने लगा
1: और
0: रखे हैं?
1: जी हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी
0: अरे वाह, बहुत
1: रखते
0: बहुत
1: हैं।
0: अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से जो
1: हाँ
0: दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है ये।
1: जी, चिड़ियों
0: और साथ
1: की चहचहाट जो है सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें
1: जी।
0: अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: हाँ खुश होती
0: तो
1: हैं, सब
0: बिल्कुल
1: आती हैं, सब खेलती
0: जी,
1: हैं, तो
0: जब
1: बड़ा
0: वो
1: अच्छा लगता
0: चहचहाती
1: है
0: हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना? तो
1: जी।
0: आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जादू से मिलने का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं उड़ीसा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ
0: जी, आप अपना नाम बताइए।

0: पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है, लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ये हो रही है कि आज सखी सहेली तो मेरी फोन लगी तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों का बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाई देंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। जी, तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: 2000 साल की बात।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11

0: बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर

दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर। शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकी अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ। संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफ़ी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ, बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही, बाद में ही सही। समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूं, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे

इतना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं, तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ, मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज़ आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली।

मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनकी दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे।

के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ, मेरी स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर

पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए, इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश हैं ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए, लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना, साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी श्रोता साथी सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिन्हें हमने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किया। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है, शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोता साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार युवा साथियों, मैं हूं आज आपके साथ आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे बरखा कश्यप। तो स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। युववाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की, जो हर वर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। दोस्तों, सुबह की ताज़ी हवा, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, नदियों का बहता पानी और बारिश की ठंडी फुहारें, ये सब प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, अगर ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? आज हम आपसे अपने आसपास देखने को कहेंगे कि आसपास देखिए कि गर्मियाँ पहले से अधिक गर्म हो रही हैं। कई शहरों के तापमान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कभी अचानक भारी बारिश होती है तो कभी लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। ये

केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही का भी परिणाम है। युवा साथियों, पर्यावरण संरक्षण की बात अक्सर बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे दैनिक जीवन से होती है। उदाहरण के लिए, जब हम बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाते हैं, तब हम प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं। जब हम अनावश्यक रूप से बिजली के उपकरण बंद कर देते हैं, तब ऊर्जा बचाते हैं। जब हम घर के आसपास एक पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तब हम केवल एक पेड़ नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा का इंतजाम कर रहे होते हैं।

ज़रा अपने बचपन को याद कीजिए, कितने लोग होंगे जिन्होंने आम, नीम या बरगद के पेड़ों की छांव में खेला होगा। आज कई जगहों पर वे पेड़ दिखाई ही नहीं देते, उनकी जगह कंक्रीट की इमारतों ने ले ली है। इसलिए ये समय केवल चिंता करने का नहीं बल्कि कार्रवाई करने का है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यही संदेश देता है कि प्रकृति से केवल लेना ही नहीं बल्कि उसे लौटाना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि हर युवा वर्ष में केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो करोड़ों नए पेड़ धरती को हरा भरा बना सकते हैं। यदि हम पानी की एक एक बूंद बचाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और स्वच्छता का ध्यान रखें तो बड़ा बदलाव संभव है। युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज के युवा के पास ऊर्जा भी है, जागरूकता भी है और बदलाव लाने की क्षमता भी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करने से लेकर अपने मोहल्ले में सफाई अभियान चलाने तक हर छोटा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम बन सकता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पर्यावरण की रक्षा किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है, क्योंकि जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य, हमारा भविष्य और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि प्रकृति को बचाने के लिए अपने जीवन में छोटे छोटे लेकिन सार्थक बदलाव जरूर लाएंगे। याद रखिए, पेड़ लगाना केवल एक काम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार है।

0: युवाणी का क्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा
1: आगे आना
0: शाम
1: पड़ेगा,
0: 5 बज के
1: लेकिन हमने
0: 21
1: कहा
0: मिनट
1: नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे, और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
1: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी, और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोटल्स, और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया, और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं, तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया, और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
2: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
2: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते, तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
2: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
2: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
1: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
2: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े

0: साधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है। वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
1: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे। हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगी।
0: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
1: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया। हमने उसमें अपना क्यूआर डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
0: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह यह कार्य करके यह साबित किए, बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है। और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मनोरमा नदी की सफाई हेतु युवा आकाश गुप्ता से की गई बातचीत पर आधारित पॉडकास्ट अभी आपने सुना। इसे हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया। यह आकाशवाणी का बालाघाट के केंद्र है। लीजिए, जारी है हमारा कार्यक्रम युववाणी।
5: दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने कहीं भूला तो नहीं कि मैं हूं आज आपके साथ, आपके अपने रेडियो दोस्त RJ बरखा कश्यप। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्रम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो पहली नज़र में समुद्र और मछुआरों से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में हम सभी के जीवन और भविष्य से संबंध रखता है। ये विषय है अंतर्राष्ट्रीय अवैध, अपंजीकृत और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ संघर्ष दिवस, जो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, जब हम मछली बाजार में मछलियाँ देखते हैं या किसी रेस्टोरेंट में समुद्री भोजन का आनंद लेते हैं तो शायद ही कभी ये सोचता होगा हमने कि ये मछलियाँ कहाँ से आई हैं और क्या इन्हें कानूनी तरीके से पकड़ा गया है। लेकिन दुनिया भर में बड़ी मात्रा में मछलियाँ अवैध रूप से पकड़ी जाती हैं। इसे ही अवैध, अपंजीकृत और अनियमित मत्स्य पालन कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी जंगल में पेड़ों को बिना किसी नियम के काटा जाने लगे, कुछ समय बाद

वह जंगल समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह यदि समुद्रों और नदियों में बिना किसी नियम का पालन किए लगातार मछलियां पकड़ी जाए तो एक दिन उनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर संकट आ सकता है। युवा साथियों, ये केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी प्रश्न है। हमारे देश में अनेक परिवार मत्स्य पालन पर निर्भर है। यदि अवैध तरीके से अत्यधिक मछलियां पकड़ी जाएंगी तो ईमानदारी से काम करने वाले मछुआरों की आय प्रभावित होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्री संसाधन कम हो जाएंगे। रियल लाइफ में हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ लोग तुरंत लाभ के लिए नियमों की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार लंबे समय तक नहीं चल सकता। समुद्र हमें भोजन, रोजगार और जैव विविधता प्रदान करता है, इसलिए उसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425832484।
2: आज तकनीक के माध्यम से समुद्री संसाधनों की निगरानी की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोगों में जागरूकता। युवाओं की ये भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम पर्यावरण संरक्षण, समुद्री जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति जागरूक होंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की संपदा असीमित नहीं है। जिस प्रकार हम बैंक खाते से केवल उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना उसमें जमा है, उसी प्रकार प्रकृति से भी उतना ही लेना चाहिए जितना वह दोबारा उत्पन्न कर सके। अंत में इस दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को समझेंगे, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि स्वस्थ समुद्र, सुरक्षित पर्यावरण और संतुलित पारिस्थितिक तंत्र ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है।

दोस्तों, उम्मीद है आज का युवावाणी कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप सभी को एक बार फिर से विश्व पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप ढेर सारे पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पानी को जितना हो सके उतना बचाएं। तो चलिए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

तो दोस्तों, घड़ी ने कर दिया है इशारा कि अब लेना है आप सबसे विदा। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया हो और कल हम फिर मिलेंगे नई आवाज़ के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक आप स्वीकारिए अपनी रेडियो दोस्त आरजे बरखा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 5:40 हुए हैं। लिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम आपके है कौन से, स्वर एस पी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर का है। गीत के बोल देव कोहली के लिखे हुए हैं और संगीत है राम लक्ष्मण का।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में अभी आपने ही फिल्म यादों की बारात का ये गीत सुना। शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के थे और संगीत था राहुल देव बर्मन का। फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़कन से। स्वर अभिजीत औरल का याज्ञिक का है।
1: मोहब्बत के दावे करते हैं और फिर

0: धड़कन फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम एंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए सुनिए विविध जानकारियों, सूचनाओं और गीत संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वीकारें हमारा नमस्कार आप पूरी आकाशवाणी की टीम की ओर से और आपके साथ ही ब्रजेश शिवहरे की ओर से। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर हम कुछ चंद बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में, और इसके अलावा हम आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भारतीय फिल्म निर्माता और अभिनेता मुकेश भट्ट की जिंदगी और उनसे संबंधित कुछ फिल्मों के गीतों को। बात कर रहे थे दोस्तों हम विश्व पर्यावरण दिवस की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सकारात्मक पर्यावरण कार्य हेतु दुनिया भर में इसे मनाया जाने वाला यह सबसे बड़ा उत्सव है। पर्यावरण और जीवन का एक अत्यंत गहरा संबंध है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का इसमें निश्चय लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में यह भारत का प्रारंभिक कदम था, तभी से हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं।

दोस्तों, अपने जीवन के सर्वस्व पर्यावरण की रक्षा करना, उसको बनाए रखना हम मानवों का कर्तव्य होना चाहिए। हकीकत तो यह है कि स्वच्छ पर्यावरण जीवन का आधार है और पर्यावरण प्रदूषण जीवन के अस्तित्व के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा देता है। पर्यावरण जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे और इस प्रकार पर्यावरण का स्थान जीवन की प्राथमिकताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में होना चाहिए।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
2: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
5: तो दोस्तों गुड इवनिंग कार्यक्रम में जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म निर्माता और अभिनेता मुकेश भट्ट जी के बारे में। आज आपका जन्मदिवस है अर्थात 5 जून 1952 को आप इस धरती पर आए थे, जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण किया है। वह महेश भट्ट के छोटे भाई हैं और 1986 में स्थापित प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म के सह मालिक भी हैं। मुकेश भट्ट हिंदी फिल्म निर्देशक और निर्माता नाना भाई भट्ट के पुत्र हैं।

उनके पिता गुजराती ब्राह्मण और माता गुजराती मुस्लिम थी। नाना भाई के भाई बलवंत भट्ट भी हिंदी फिल्म निर्देशक थे। उनका विवाह नीलिमा भट्ट से हुआ है। मुकेश भट्ट की एक बेटी साक्षी और एक बेटा विशेष है। विशेष फिल्म का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। मुकेश ने अपने भाई महेश के साथ मिलकर 30 वर्षों तक विशेष फिल्म के बैनर तले फिल्में बनाई है जो अविरल जारी भी हैं। हम देते हैं उन्हें हार्दिक हार्दिक बधाई उनके जन्म दिवस पर।

श्रोता साथियों, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। अब से ठीक थोड़ी देर बाद शाम 6:30 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें आज के वार्ताकार हैं श्री राजेंद्र चूक, सेवानिवृत्त राष्ट्रीय समाचार वाचक हिंदी। भेंट करता होंगी प्रकाशवती दीक्षित। तो सुनना न भूलिएगा इस कार्यक्रम के तुरंत बाद शाम 6:30 पर यह विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं महेश भट्ट साहब की। महेश भट्ट की निर्माता के तौर पर पहली सफल फिल्म जुर्म थी, जिसमें विनोद खन्ना ने अभिनय किया था। बाद में उन्होंने गुलशन कुमार के साथ मिलकर प्रेम कहानी वाली फिल्म आशिकी का निर्माण किया, जिसमें नवोदित अभिनेता राहुल राय और अनु अग्रवाल ने अभिनय किया था। इस फिल्म का निर्देशन उनके भाई महेश भट्ट ने किया था। आशिकी के बाद आई

फिल्में जिनमें दिल है कि मानता नहीं और सड़क शामिल है, जिनमें पूजा भट्ट, आमिर खान और संजय दत्त ने अभिनय किया था, सभी बड़ी हिट फिल्में रहीं। ये फिल्में उनकी प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म के बैनर तले रिलीज हुई थीं।

मुकेश भट्ट साहब ने अगले वर्षों में और भी फिल्में निर्मित की, जैसे कि सर, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किया था, नाजायज, क्रिमिनल और फरेब।

1998 में आई फिल्म गुलाम भी निर्माता के लिए एक और बड़ी सफलता थी। हॉरर फिल्म में राज सिक्वल राज द मिस्ट्री कन्फ्यूजन, राज 3 और राज रिबूट को भी दर्शकों ने बहुत सराहा। 2004 में उन्होंने अपने भतीजे इमरान हाशमी की फिल्म फुटपाथ के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया, जिसमें बिपाशा बसु भी थीं। निर्माता के रूप में उनकी हालिया फिल्मों में जहर, कदयुग, गैंगस्टर, वो लम्हे, जन्नत तुम मिले, मर्डर और आशिकी शामिल हैं।

उन्होंने अपने भाई महेश के साथ मिलकर मिस्टर एक्स और हमारी अधूरी कहानी का निर्माण किया, जिसमें इमरान हाशमी और विद्या बालन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म भट्ट के माता पिता नाना भाई भट्ट और शिरीन मोहम्मद अली और उनकी सौतेली माँ की प्रेम कहानी पर आधारित थी। विशेष फिल्म बैनर के तहत बनी सभी फिल्में हिट रही और इनमें पूजा भट्ट ने आमिर खान, संजय दत्त और राहुल राय जैसे सितारों के साथ दिल है कि मानता नहीं, सड़क और जुनून में अभिनय किया। संघर्ष में प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार ने अभिनय किया था। हॉरर फिल्म राज और इसकी सिक्वल राज द मिस्ट्री कन्फ्यूजन दोनों को ही खूब सराहा गया। उन्होंने मोहित सूरी और विक्रम भट्ट जैसे प्रतिभाशाली निर्देशकों के साथ काम किया। अगर हम बात अवार्ड्स की करें तो 1992 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी दिल है कि मानता नहीं के लिए वे नॉमिनेट हुए। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी गुलाम के लिए 1999 में नॉमिनेट हुए। राज फिल्म के लिए 2003 में नॉमिनेट हुए और पॉपुलर अवार्ड फॉर बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर मर्डर के लिए 2005 में भी नॉमिनेट हुए। 2015 में ग्लोबल फिल्म अवार्ड एट द ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न में उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। हम देते हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई उनके जन्मदिवस पर और सुनते हैं उनकी निर्देशित फिल्म का ये अंतिम गीत।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर श्री राजेंद्र चुग से प्रकाशवती दीक्षित की बातचीत। आप सेवानिवृत्त राष्ट्रीय समाचार वाचक हिंदी हैं।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के शानदार 90 वर्ष, जी हाँ, पिछले 8 जून 2025 को आकाशवाणी ने मनाया अपना 90वां जन्मदिन। 1936 को शुरू हुआ ये सफल सफरनामा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श को साकार करता हुआ अपनी श्रोताओं के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। तो आइए इस गरिमामयी 90 साल के सफर को और सराहनीय बनाएं और इसके लिए हम सभी मंगलमयी कामना करें।

0: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करती हमारी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के सुअवसर पर इस विशेष कार्यक्रम में सभी का स्वागत है, वंदन है।
1: ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों के इस ऐतिहासिक यात्रा में समाचार प्रसारण ने देश को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष से सन 2012 में सेवानिवृत्त हुए हिंदी के मुख्य समाचार वाचक श्री राजेंद्र चुग, जिन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से करोड़ों श्रोताओं तक समाचार पहुंचाए हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इस अनूठी यात्रा के कुछ अनसुने पहलू। राजेंद्र जी नमस्कार।
2: नमस्कार और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: आकाशवाणी बालाघाट की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत।
2: जी धन्यवाद।
1: राजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो हम सब जानना चाहेंगे आपके शुरुआती जीवन के बारे में और आपकी इस आवाज के पीछे की कहानी का क्या राज है, समाचार वाचन की दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ?
2: ऐसा है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि रेडियो शायद मेरे हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ था। यूं

0: कहिए कि कॉलेज पास करने के बाद यानी बीए पूरा करने के बाद मैंने किसी भी पद के लिए एक ही बार अप्लाई किया और मुझे वो मिल गया।
1: क्या बात है।
0: जिस दिन मेरे घर में ये खत आया कि आपका रेडियो में अनाउंसर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने अपने जीवन के 21 बरस पूरे किए थे।
1: वाह वाह।
0: तो यूं समझिए कि 21 साल का नौजवान होते ही मैंने रेडियो के गेट के अंदर पहला कदम अपना रखा। उसके बाद ये भी एक संयोग है कि 5 बरस अनाउंसर रहने के बाद डिपार्टमेंटल टेस्ट के जरिए जब मैं न्यूज रूम में आया हूँ दिल्ली उस दिन भी मेरा जन्मदिन था।
1: क्या बात है।
0: 26 साल का हुआ था उस दिन
1: जी।
0: तो उस दिन मैंने अपने 27वें बरस का पहला कदम मैंने न्यूज रूम में रखा, हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में समाचार सेवा प्रभाग में। यानी यूं समझिए कि शुरुआत हुई एक रीजनल स्तर पर, पहुंच गए राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ हूं तो भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने मुझे एंगेज किया अपना कैंपस रेडियो चलाने के लिए हेड ऑफ प्रोग्रामिंग के तौर पर। और एक अतिरिक्त जिम्मेदारी मुझ पर ये डाली गई कि आप बच्चों को रेडियो पत्रकारिता भी पढ़ाएंगे। तो एक अध्यापक के तौर पर और एक रेडियो संचालक के तौर पर तीसरी पारी शुरू हुई जो कि सामुदायिक स्तर पर थी, वो मैंने 7 बरस निभाई। तो तीनों स्तरों पर काम करने का लगभग 35 बरस तो न्यूज रूम मान लीजिए, 45 बरस का जो अनुभव था रेडियो में काम करने का वो इस तरह से 3 मरहलों में पूरा हुआ। यात्रा रही, ये बृहद यात्रा रही
1: जी जी,
0: क्योंकि रेडियो में ही प्रवेश मिला काम करने के लिए और रेडियो से ही एग्जिट हुआ 67 की एज में। तो कुल मिलाकर पूरा जीवन देखा जाए तो रेडियो से ही वाबस्तगी रही और अभी मैं रेडियो से मेरा जुड़ाव खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है।
1: ये जान के हमें बेहद खुशी हुई कि आप अभी तक जुड़े हुए हैं अपने रेडियो से।
0: मैं आपको बचपन की बात बताऊं तो मैं सतलुज किनारे के एक छोटे से गांव से आता हूं। ये पंजाब में जिला जालंधर के 40-45 किलोमीटर दूर इंटीरियर में है, ये बिल्कुल सतलुज के किनारे। सतलुज मेरे घर से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर बहता है।
1: अच्छा।
0: मुझे मालूम नहीं था कि मैं छोटा सा बच्चा जब रेडियो सुनता था तो मेरे मन में कुछ सवाल तो उठते थे, जैसे कि ये रेडियो बोलता कैसे है, इसके अंदर जो लोग बैठे हैं जो बातें कर रहे हैं हमसे ये कहाँ बैठे हुए हैं
1: जी,
0: ये इतनी बातें कैसे कर लेते हैं। ये उस दौर की बात है जब मैं अपने गांव में रहता था और 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के दिन थे और हमारा छोटा सा गांव था, उसका छोटा सा बाजार था, उसमें एक छोटी सी रेडियो की एजेंसी थी, मतलब वो डीलरशिप थी जो शाम को अपना वो जो एकमात्र रेडियो उसके शोरूम में पड़ा रहता था उसको ऑन करके वो बाहर टेबल पे रख देता था। डीलर जो था वो रेडियो पर सुनने के लिए युद्ध से संबंधित समाचार या इस तरह के दूसरे कार्यक्रम सुनने के लिए वो 15-20-25-30 लोगों की भीड़ जुड़ जाती थी। मेरी 1965 में उम्र रही होगी कोई 12-13 साल समझ लीजिए। बड़ी उत्सुकता से रेडियो सुनता था
1: जी,
0: सारी चीजें उठती थी मन में, लेकिन ये नहीं मुझे मालूम था कि 10 साल बाद मैं ही इस रेडियो के अंदर घुसने वाला हूँ तो लोग मुझे इसी तरह से रेडियो के बाहर बैठकर सुनेंगे। तो वो छोटा सा गांव, छोटा सा बच्चा रेडियो सुनता सुनता रेडियो में कैसे घुस गया और अभी तक रेडियो के साथ कैसे अपने स्नेह से जुड़ा हुआ है
1: जी,
0: ये शायद विधाता ने कोई खेल किया है
1: जी। तो कभी राजेंद्र जी सोचा आपने कि एक दिन आप राष्ट्रीय समाचार वाचक के रूप में, वो भी मुख्य समाचार वाचक के रूप में पहचाने जाएंगे?
0: नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। सच्ची बात ये बताऊं तो रेडियो मेरी कल्पना में, मेरे करियर की इमेजिनेशन में कहीं नहीं था।
1: अच्छा।
0: जैसे मैंने आपको 1965 की भारत पाक जंग का उदाहरण दिया, इससे थोड़ा सा और पीछे अगर चले जाएं तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो मेरी उम्र केवल 9 साल की थी। तो 62 की जंग बचपन में देखी, 65 की जंग बचपन में स्कूल में देखी, 71 की जब वार हुई है तो मैं सेकंड ईयर में पढ़ा।

0: सकता था। हाँ। तो मेरे मन में भी एक सपना था कि मैं सेना में जाऊंगा और कोई अच्छा सा सिपाही बनूंगा वहाँ पर।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी नियति मुझे सेना में नहीं रेडियो में लेके जा रही है। मैंने 1973 में ये पास किया है।
1: हाँ।
0: और ये पास करने के बाद जब एक वो स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ, नौकरी ढूंढने की एक्सरसाइज शुरू हुई, रेडियो का जब विज्ञापन निकला, तो मैंने अपने जीवन में किसी भी नौकरी के लिए, सरकारी या गैर सरकारी, एक ही एप्लीकेशन लिखी और संयोग से उस एप्लीकेशन के जरिए रेडियो में मेरा चयन हो गया। उसके बाद फिर मैं कहीं निकल ही नहीं पाया।
1: जी जी,
0: रेडियो को छोड़कर कहीं नहीं निकल पाया।
1: जैसे आपने कई लोगों के साथ काम किया है, तो किन किन लोगों के अनुभवों ने सबसे ज्यादा आपको प्रेरित किया?
0: देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा सहयोग था।
1: हाँ?
0: कि बहुत से ऐसे लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा जिनका कद इतना बड़ा था कि अगर उनकी तरफ सिर उठा के देखूं तो सिर से टोपी गिर जाए।
1: जी,
0: जिस जगह पर जाकर मुझे काम करने का मौका मिला, उस स्टेशन पर सुदर्शन फाकिर जैसे शायर काम करते थे।
1: वाह।
0: तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिस माइक्रोफोन पर, जिस स्टूडियो की जिस कुर्सी पर बैठकर सुदर्शन फाकर काम करते थे, उसी स्टूडियो में उसी कुर्सी पर बैठकर मुझे भी अनाउंसर के तौर पर काम करने का मौका मिला। और जब मैं न्यूज रूम में आया हूँ दिल्ली, तो उस वक्त तो एक से एक महाबली वहां पर मौजूद थे। पहले ही दिन जिस दिन मैंने पैर रखा है न्यूज रूम में, हिंदी न्यूज रूम में, तो मैंने दर्शन किए आदरणीय देवकी नंदन पांडे जी के।
1: क्या बात है।
0: तो पांडे जी, अशोक वाजपेयी जी, मैडम विनोद कश्यप जी, जैसे धुरंधर जो आकाशवाणी समाचार के पर्याय माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं,
1: जी जी,
0: ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मुझे कुदरत ने मौका दिया। तो उनकी तरफ देखकर मन में जब ये उठता था कि एक दिन क्या आएगा मेरी जिंदगी में भी कि जितना नाम, जितनी शोहरत, जितने काम की अमाउंट ऑफ जॉब, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ बॉडी ऑफ वर्क जो जिस तरह से उनके पास है, क्या मेरे पास होगी? तो शायद आज मेरा मन थोड़ी सी गवाही तो देता है कि हाँ यार, कुछ तो किया है,
1: वाकई
0: कुछ तो करके मंच से उतरे हो। तो मेरा मन संतुष्ट है कि ऐसे लोगों का साथ भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला, और कुछ कुछ उन लोगों की सफ में बैठने का सौभाग्य भी मिला।
1: जी देखिए राजेंद्र जी, आप तो चीफ न्यूज रीडर भी रहे हिंदी के, और साथ में रेडियो न्यूज एंकर भी आप रहे हैं। क्या अंतर है इन दोनों विधा में?
0: ये आपने बड़ा अच्छा और बड़ा टेक्निकल सा सवाल पूछा है
1: जी।
0: ये इसके लिए थोड़ा सा इतिहास को दो खंडों में बांटना होगा। 16 अगस्त 1991 को आकाशवाणी ने न्यूज एंकर का दौर शुरू किया।
1: हाँ।
0: उससे पहले न्यूज रीडर का दौर था। ये जितनी भी हस्तियों के नाम मैंने अभी आपको बताए, देवकी नंदन पांडे जी से लेकर विनोद कश्यप जी तक, ये दौर न्यूज रीडर्स का दौर था। उस दौर में बुलेटिन 10 मिनट का हुआ करता था, सुबह 8 बजे 10 मिनट का बुलेटिन, दोपहर को 2 बजे तो 10 मिनट का बुलेटिन, हाँ रात का जो 8:45 पर बुलेटिन आज भी 15 मिनट का है, उन दिनों भी 15 मिनट का हुआ करता था। न्यूज रीडर के लिए न्यूज एडिटर बुलेटिन बनाता था, स्टूडियो में भेजता था, और न्यूज रीडर उसको पढ़ के वापिस आ जाते थे। लेकिन 1991 के 16 अगस्त की तारीख के बाद ये फैसला किया गया कि हम अब न्यूज रीडिंग के दौर से आगे निकलते हुए न्यूज एंकर के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 10 मिनट के बुलेटिन 15 मिनट के हुए
1: जी।
0: उनकी बाकायदा सिग्नेचर ट्यून बनी, उनका नामकरण हुआ, सुबह के बुलेटिन को समाचार प्रभात, शाम के बुलेटिन को समाचार संध्या, और दोपहर के बुलेटिन को दोपहर समाचार का नाम दिया गया, और उसके बीच में 3 अंग बनाए गए उसके। एक अंग बनाया गया समाचारों का, दूसरा अंग बनाया गया उसके ऊपर जो आज की सबसे बड़ी खबर है उसके ऊपर किसी विशेषज्ञ की टिप्पणी, और तीसरा अंग बनाया गया कि आज के अखबारों में क्या मोटी मोटी खबरें छपी हैं। तो

0: फ्रॉम द प्रेस ही एक अंग था उसका, तो तीन अंगों के साथ वो बुलेटिन संजोया गया और उसको प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी एक न्यूज एंकर के तौर पर एक व्यक्ति को दी जाती थी
1: जी।
0: मैं इस बात को आपके साथ शेयर करके मुझे लगता है कि आज भी मुझे मैं रोमांच महसूस कर रहा हूँ कि 16 अगस्त 1991 को न्यूज एंकर का पहला बुलेटिन मैंने ही प्रस्तुत किया समाचार प्रभात पर,
1: तो
0: उस लिहाज से आकाशवाणी का पहला रेडियो न्यूज एंकर बनने का गौरव भी ईश्वर ने मुझे दिया।
1: वाह वाह वाह। ये कह लीजिए कि ये जो समाचार वाचन होता है ये इतना त्वरित और स्पॉन्टेनियस होता है कि जिसमें वाचक को तो बेहद सतर्क रहना पड़ता है,
0: जिसमें कोई शक नहीं।
1: कभी ऐसा हुआ है कि समाचार पढ़ते पढ़ते ही कोई आवश्यक या कोई ऐसी सनसनीखेज क्लिप आप तक पहुंचाई गई हो कि इसे अभी पढ़ना है तब?
0: बिल्कुल होता है।
1: अच्छा,
0: देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी पुरानी कहावत है, व्यापारी लोग या छोटे दुकानदार लोग कस्बे देहात के आज भी अपने बच्चों

0: ये एग्जाम्पल देते हैं कि ग्राहक का दुकान पर आने का कोई समय नहीं होता। हमें हमारे बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने, रेडियो के विद्वानों ने ये सिखाया, समाचार के आने का भी कोई वक्त नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: समाचार कभी भी आ सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से आ सकता है, और वो समाचार बड़ा भी हो सकता है। आप अगर कहें तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण एक याद आ गया
1: जी।
0: ये 26 जनवरी 2002 की बात है, सवेरे तैयारी हो रही है रिपब्लिक डे परेड की दिल्ली में, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड से बड़ा फंक्शन तो कोई होता नहीं भारत में
1: जी जी।
0: 6 बजे का बुलेटिन, 7 बजे का बुलेटिन लीड कर रहा है कि आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस समारोह मनाए जाने की पूरी तैयारियां हो गई है। लेकिन 7:40 के आसपास भुज में भयंकर भूकंप आ गया
1: जी जी।
0: तो 8 बजे की बुलेटिन की हेडलाइन ही गणतंत्र दिवस से हटकर भुज के भूकंप पर चली गई, और उस वक्त भूकंप भी आया ही आया था, हमारे भुज संवाददाता ने हमें बताया ही था कि भूकंप बहुत जोरदार है। अभी मैं केवल आपको इतनी सूचना दे रहा हूँ कि भयंकर भूकंप आया है, भीषण दुर्घटना हो गई है, लेकिन इसकी डिटेल्स हम आपको जैसे जैसे हमारे पास आएंगी वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो 8 बजे का बुलेटिन शुरू होने के बाद जैसे जैसे वो विस्तार मिलता गया वहां से और ब्यौरा वहां से हासिल होता गया, हम उस समाचार में उसको शामिल करते चले गए, क्योंकि समाचार बुलेटिन का पहला फर्ज क्या है, अपने श्रोताओं को समाचारों के मामले में हमेशा अपडेट रखना।
1: जी जी जी,
0: ताजा समाचार ही समाचार है, समाचार कभी बासी नहीं होता।
1: हाँ।
0: और बासी खबर कभी ताजा खबर नहीं होती
1: जी जी।
0: तो इसलिए ये जो मानकर चलना कि आपको बुलेटिन चलते वक्त कोई भी समाचार अगर कहीं पर घटित हुआ है उसकी सूचना मिल सकती है, तभी आप सुनते सुनते कभी कभी आपके मन में आता होगा अभी अभी समाचार मिला है कि फलां जगह पर ये घटना हो गई
1: जी।
0: वो जो अभी अभी समाचार मिला है उसको न्यूज की भाषा में हम फ्लैश बोलते हैं। फ्लैश कभी भी आ सकती है, और वो फ्लैश तभी आती है जब वो समाचार कहीं पर घटित होता है
1: जी जी। आपकी व्यक्तिगत यात्रा ऑल इंडिया रेडियो या आप आकाशवाणी कह लीजिए उसकी यात्रा से जुड़ती है, तो ये रिश्ता जो है वो और भी विशेष हो जाता है। तो ऐसे में इस संस्था के 90 साल पूरे होने पर आपके मन में क्या भाव आते हैं?
0: देखिए, लोग आएंगे जाएंगे
1: जी।
0: मैंने अपनी स्मृतियों में जिन लोगों के नाम अभी तक याद हैं, वो शायद मेलविल डिमेलो से वो नाम शुरू होते हैं। फिर बहुत से नाम उसके बाद हैं, जिसमें देवकी नंदन पांडे जी का नाम मैं पहले ले चुका हूँ। ये हस्तियां आई अपने अपने वक्त में, अपनी अपनी भूमिका उन्होंने निभाई, और अपनी भूमिका निभाने के बाद वो मंच से नीचे उतर गए। मेरे हिस्से में भी जो भूमिका आई वो 1979 से ईयर 2012 तक मैंने निभाई, और फिर मैं भी मंच से नीचे उतर गया। तो लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन संस्था चलती रहेगी, आकाशवाणी का स्वर गूंजता रहेगा, उसको चाहे 90 साल पूरे हों, 100 साल पूरे हों, 1000 साल पूरे हों, वहां पर इसी तरह से नए नए लोग, नई नई प्रतिभाएं, नई नई हस्तियां आती रहेंगी और इस अपनी अपनी भूमिका को निभा के जाती रहेंगी
1: जी जी।
0: तो ये कि आज जो संस्था 90 साल की हुई है, कल को वो 100 साल भी पूरे करे, और ईश्वर करे कल को 1000 साल भी पूरे करे, यही मेरे मन में इस वक्त कामना होती है। हमारे जाने के बाद भी शो तो चलता रहेगा।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मोटिवेशनल विचार है आपके। तो आपको क्या लगता है कि देखिए आजकल तो डिजिटल मीडिया का युग है, तो जो हमारे श्रोता है आज भी आकाशवाणी के समाचारों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं?
0: देखिए, मैं आपको यहाँ एक थोड़ी सी तथ्यात्मक उदाहरण देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ।
1: हाँ।
0: भारत में केवल 2 ही संस्थाएं हैं जिनसे लोगों को समाचार मिलते हैं, जहाँ तक रेडियो का ताल्लुक है
1: जी जी,
0: जिसमें से एक हमारी आकाशवाणी है
1: जी।
0: आकाशवाणी ने अगर अपनी पॉपुलैरिटी हासिल की है,

0: क्रेडिबिलिटी हासिल की है, विश्वसनीयता बनाई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आकाशवाणी से जो भी समाचार प्रसारित होता है वो तथ्यों पर आधारित होता है। हम लोग न्यूज रूम में तब तक उस खबर को स्टूडियो में नहीं लेके जाते जब तक दो बार हम उसकी पुष्टि नहीं कर लेते, चाहे किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के रन बने हो, चाहे किसी दुर्घटना में हताहतों की संख्या हो, हम दो बार उसकी पुष्टि नहीं कर लेते कि ये आंकड़ा सही है, ये तथ्य सही है, तब तक हम उसको समाचार का रूप देकर न्यूज रूम से स्टूडियो तक नहीं पहुंचाते। तो लोगों को ये पता है कि जो खबर रेडियो से दी जा रही है, रेडियो से मतलब यहाँ मेरा ऑल इंडिया रेडियो है जो अब आकाशवाणी हो गया है पूर्ण रूपेण, तो आकाशवाणी से जो भी आप सुनेंगे वो तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप पर आधारित नहीं है। तो सबसे बड़ा विश्वास जो इस देश की जनता का है, आकाशवाणी जो बोलता है वो तथ्यात्मक आधार पर बोलता है, गपशप के आधार पर नहीं बोलता। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है
1: जी।
0: तो विश्वसनीयता जो है वो सम्मान अर्जित करने का पहला पड़ाव है आकाशवाणी के लिए
1: जी।
0: कई बार कुछ गलतियां होती हैं जिसको हम मानवीय गलती के एक बॉक्स में डाल सकते हैं। हम लोग सब आदमी हैं, आदमी गलतियों का पुतला है,
1: बिल्कुल
0: गलतियां करता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं चूक हमसे भी होती है। लेकिन बुलेटिन में ये भी अक्सर सुना होगा, कृपया इस समाचार को इस तरह सुन लें, इसका मतलब उसमें न्यूज रीडर कोई ना कोई करेक्शन आपको देना चाहता है, क्योंकि हो सकता है पहले कोई आंकड़ा गलत बता दिया गया हो, कोई सूचना गलत बता दी गई हो, तो जब उसको ये कहा गया कि कृपया इस खबर को दोबारा सुन लें, इसका मतलब है वो संशोधन वहीं के वहीं करके अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, एक खबर सही हो, दूसरा ताजा हो, एकदम से अपने श्रोताओं तक पहुंचे, मैं समझता हूँ ये तो सबसे बड़ी बातें हैं जो रेडियो का लिसनर महसूस करता है कि मैं जो कुछ भी हासिल कर रहा हूँ, मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो एकदम से तथ्यात्मक है। नंबर दो, जैसे आपने उसके डिजिटल होने की बात कही, मैं उन रेडियो के श्रोताओं में से हूँ जिन्होंने आज से यूं समझिए कि 60 साल पहले कह लीजिए ट्यूब वाले रेडियो भी देखे, अपनी ही जवानी में ट्रांजिस्टर देखे
1: जी,
0: कान पर रेडियो लगाकर कमेंट्री सुनने वाले युवकों में मैं भी था, मैं भी कॉलेज में लेके जाता था, हाथ में पकड़ के हथेली भर का रेडियो कान पे लगा रहता था ये जानने के लिए कि क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ, या उन दिनों जो शौक हुआ करता था ये कि जब भी भारत की टीम ओलंपिक में हॉकी खेलने के लिए जाती थी, पूरा भारत हॉकी की टीम वो कमेंट्री मैच की अपने उसी ट्रांजिस्टर पर सुनता था जो उसकी हथेली में आ जाता था, जो वो कान पर चिपका के रखता था
1: जी जी जी।
0: वो टेक्नोलॉजी जो ट्यूब वाले रेडियो से शुरू हुई, आज वो टेक्नोलॉजी मोबाइल में ऐप पर आ गई है, आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी रेडियो का ऐप लगाकर आप उसे सुन सकते हैं। टेक्नोलॉजी बदली है, रेडियो नहीं बदला।
1: क्या बात,
0: रेडियो वही है, रेडियो के सुनने वाले वही हैं
1: जी,
0: और रेडियो के सुनने वालों का रेडियो के प्रति शौक भी वही है। वो विविध भारती सुनने वाले जो ट्यूब वाले रेडियो पर सुनते थे, वो विविध भारती सुनने वाले जो आज अपने मोबाइल पर विविध भारती सुनते हैं, उनके शौक में कोई कमी नहीं आई। टेक्नोलॉजी 50 साल 60 साल 70 साल आगे बढ़ गई है, कंटेंट वही है, सुनने के शौकीन वही है
1: जी। बेहद दुरुस्त फरमाया आपने, और बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई आपसे बात करके। अत्यंत आभारी हैं आपके कि आप इस अब आकाशवाणी कहलाने वाली संस्था के इस विशेष कार्यक्रम में हमसे जुड़े, अनेकानेक धन्यवाद। मगर जाने से पहले किसी गीत की फरमाइश आपको करनी हो तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: ये अगर आपने धागा फिर मेरे बचपन या 19-20 साल की उम्र के साथ जोड़ा है, तो एक पिक्चर आई थी इम्तिहान, और उसका एक गीत जो शायद मेरे लिए उन दिनों प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, अगर वो गीत मेरी तरफ से आप श्रोताओं को सुना सकें, तो इसी गीत के जरिए मैं अपने श्रोताओं को भी एक संदेश पहुंचा दूंगा, और इसी गीत के जरिए श्रोताओं को भी अपना नमस्कार कह दूंगा, और शुक्रिया एक बार फिर।

ये था आज का विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के गरिमामयी 90 वर्ष पूर्ण होने पर। आलेख और संकलन प्रकाशवती दीक्षित और प्रस्तुति सहयोग रहा सहायक निदेशक कार्यक्रम के विक्रम सिंह का।

अभी श्रोता साथी सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर। वार्ताकार थे श्री राजेंद्र जोग, सेवानिवृत्त राष्ट्रीय समाचार वाचक हिंदी। आपसे भेंट ले रही थी हमारी साथी प्रकाशवती दीक्षित।

यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा शाम 7:10 पर, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:21 पर हम आपको सुनवाएंगे चंद फिल्मी नगमे, कार्यक्रम का नाम होगा फिल्म संगीत।

शाम 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे किसान श्रोता साथियों का कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 8 बजे से लेकर रात 8:30 तक हम आपको सुनवाएंगे चंद फिल्मी गीत। कार्यक्रम का नाम होगा फिल्म संगीत। रात 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सोनू निगम के स्वर में चंद पॉप सॉन्ग, कार्यक्रम पॉप म्यूजिक के अंतर्गत।

रात 9 बजे से लेकर रात 9 बजकर 15 मिनट तक और रात 9 बजकर 30 मिनट से लेकर रात 10 बजकर 30 मिनट तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से करेंगे।

स्पॉटलाइट न्यूज सुनिएगा रात 9:15 पर। रिले करेंगे हम इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी सभा की अंतिम प्रस्तुति के रूप में हम आपके लिए लेकर आएंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रात 10:30 पर। रात 11 बजे आप सुनेंगे समाचार।

हर और रात 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचारों का प्रसारण भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है।

0: when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
1: India today lodged a strong protest with Pakistan regarding the neighboring country's plans to hold general elections to the so-called Gilgit-Baltistan Assembly in the Indian territories illegally and forcibly occupied by Pakistan. The elections are scheduled for 7th of this month. In hockey, India has defeated Pakistan 5-3 in the semi-final of the men's Under-18 Asia Cup 2026 in Kakamigara, Japan today to set up a title clash against host Japan. In a high-scoring contest, India held its nerve against its arch rival to seal its place in the final. And that is the end of this news bulletin.
2: बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने आकाशवाणी परिसर में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ। और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा में कई साल पहले ही बड़े कदम उठा लिए थे और देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क भी यहीं के पाटन जिले में लगाया गया था।
4: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
3: सूरत के बाद श्री मोदी दमन भी जाएंगे, जहां करीब 2,970 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा वे लक्षद्वीप के लिए कई अहम समुद्री परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। इस लेख में श्री यादव ने पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जनभागीदारी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 श्रेणियों में 11 राज्यस्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी की जाएगी। डॉ यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक परिसर में हरित सहकार अभियान की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कोलारस की चीनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने और किसानों को MSP से अधिक दाम दिलाने का ऐलान भी किया।
5: हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शकर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही, एक नहीं दो दो लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती कालीसिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है।
3: वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की मौजूदगी में माचना नदी के घाट पर

0: पौधरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया तो झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वन विभाग परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में नगर परिषद ने 2000 से अधिक पौधे लगाए, जबकि रायसेन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों से खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की। गुना में एनसीसी ने जागरूकता रैली निकाली और सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन ने पौधरोपण किया। जबलपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान बताए गए। वहीं देवास, अशोकनगर, इंदौर, शिवपुरी और धार में भी जिला प्रशासन की अगुवाई में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने पहले समारोह में 66 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और अगले महीने की 31 तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला के ऐतिहासिक पुष्पबंता पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने की परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और पूर्व राजघराने के सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक भी मौजूद रहे। इस परियोजना से त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वृद्धाश्रमों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर और सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए अंतरपीढ़ी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी के पाटनगढ़ गांव के गोंडी चित्रकारों की कला अब अमेजन ई कारीगर प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंचेगी। इसके लिए आजीविका ग्राम संगठन और डॉट्स एंड डैशेस संस्था के बीच MOU साइन किया गया है। गांव के 157 परिवार सीधे इस कला से जुड़े हैं, जिसमें 85 महिला और 72 पुरुष कलाकार शामिल हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस कला को GI टैग दिलाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में बाल कल्याण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 134 प्रतिभागी 4 बैचों में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, मिशन वात्सल्य योजना और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सेमरी गांव की बेटी अंजना यादव ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस अद्भुत उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई दी और उनके हौसले की तारीफ की। इंदौर में 9 जून से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने कल इंदौर पहुंचकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। इस सम्मेलन में इंदौर को वैश्विक स्तर पर अपनी कृषि और नवाचार उपलब्धियां प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। प्रदेश में मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस दौरान प्रदेश की सभी नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब जिनका किसी नदी से संबंध नहीं है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में मलेरिया निरोधक माह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन 6 और 7 जून को देवास में किया जाएगा। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिले में खाद वितरण व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली और जैविक खेती को बढ़ावा देने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और झाबुआ में 7 जून को समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 18,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने वन मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन

0: ने आकाशवाणी परिसर में लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में किया एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ और इंदौर में 9 जून से होगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन, तैयारियां अंतिम चरण में। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
1: अभी श्रोता साथी सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया। एफएमएन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं 1942 ए लव स्टोरी से, जिसमें स्वर कुमार सानू का है। गीत के बोल जावेद अख्तर के लिखे हुए हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे 1942 लव स्टोरी का ये प्यारा सा गीत। स्वर कुमार सानू का था, गीत के बोल जावेद अख्तर साहब के थे और संगीत था आर डी बर्मन का। लीजिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए जिसे हम सुनवा रहे हैं आपको, फिल्म वो लम्हे से, स्वर जावेद अहमद का है, शब्द हैं सईद कादरी के और संगीत है प्रीतम का।

0: वो लम्हे फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 होने ही वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: बुंदेली समाचारों के बाद भैया हम आपके लाने आज एक रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। रेडियो रिपोर्ट है जा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जो कार्यक्रम है और रिकॉर्डिंग सहयोग है अंशु तिलेठे को, संयोजक श्री चंद्रशेखर शर्मा को।
2: प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, इसकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कदम से संबंधित विचारों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विचार हम जानते हैं।
3: हम कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें, तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन दीप प्रज्वलन के साथ, हम अगर अब सूर्योदय सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ, हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी में, वो डेमोंस्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बताया कि आप तो आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया, भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहाँ गाँव से गाँव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा। यहाँ तो इस पूरी चीज़ों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदि काल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही है, इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते हैं कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए इस दिवस कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई।
2: इसी तारतम्य में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी के विचारों को हमने जानना चाहा और हम लेकर आए हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके विचार आप सभी श्रोताओं के लिए।
4: क्योंकि आज का दिन हम सबके बीच में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में हमें ध्यान में आता है, पहले तो वायु, फिर वृक्ष जो पौधे, फिर आता है जल। वायु की बात तो हमारे माननीय अशोक बड़वाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से, मगर अगर हम वृक्ष की बात करेंगे, पौधे की बात करेंगे, तो आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे गर्व से कहता हूं मैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य

0: प्रदेश में जब यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जब चलता है तो पूरा मध्य प्रदेश के हमारे चाहे नेता हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, संगठन हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, अन्य सभी साथियों ने चढ़ बढ़कर एक आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाकर इतिहास दर्ज किया है कि आप सबने एक पेड़ मां का नाम केंद्र पेड़ लगाया। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबके जीवन भाग्य का दिन है। शायद हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी मध्य प्रदेश के अंदर आएगा कि हमें अपनी मां के नाम से मिलेगा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करूंगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अभियान चला है, अब मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम अभियान चल रहे हैं, मगर एक अभियान और भी बहुत महत्वपूर्ण हम सबके जीवन में है, जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब मध्य प्रदेश के अंदर चलता है तो आप सोचो, कल्पना करो कि लाखों खेत तालाब और मध्य प्रदेश की ऐसी धरोहर, चाहे वो चंदील काल के तालाब हो, चाहे वो बावड़िया हो, आज मुझे गर्व से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग कभी सोचते नहीं थे, ऐसी बावड़ियों का, छोटे छोटे तालाबों का, ऐसे हमारे आपके मार्गदर्शन में हजारों बावड़ियों का निर्माण हुआ ताकि जल का संरक्षण हो सके, जल को हम रोक सके के माध्यम से हम सबको जोड़ने का अवसर मिलता है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से यही आग्रह कहूंगा, पेड़ लगाने के साथ उसकी पानी को हम संरक्षण तो हमारी सरकार के मार्गदर्शन में हो ही रहा है, हम लोग कर ही रहे हैं, मगर हम सबकी जिम्मेदारी भी है, हम चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम आम व्यक्ति हो, वो संकल्प लेके जाए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कि हम पेड़ की सुरक्षा भी करेंगे, जल का संरक्षण भी करेंगे। मुझे वाले समय में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभियान चल रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ेगा, और हम लोग जो हमारी इच्छा है, हम लोग जो सोच रहे हैं, वो हम पुनः एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
1: आज के इस कार्यक्रम में पुरस्कृत हमारे कृषक भाई की मेहनत और समर्पण को हम उन्हीं के मुख से जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह उनके छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने का वीड़ा उठाया। आइए जानते हैं।
2: मैं विवेक सिंह राठौर हूँ सर, मैं पर्यावरण से जुड़ा हूँ। मैं बचपन से, हमारे घर में क्या है कि हमारे जो बहन थे तो उन्हें छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे, तो हमने प्रेरणा वहाँ पाई। बाकी हमारे गांव में एक तालाब था, तो तालाब में क्या है सर, एक वो जैसे गांव की भाषा में कलम डाला खेलते थे, ऊपर चढ़ के ऊपर नीचे उतरते थे, तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली होगा। तो वहाँ से मेरा, मैंने आज दिनांक 548,934 पौधे जो कर्सों की निजी भूमि में लगाए, जो और भारत के जंगल वो तो अपनी जगह है ही सही, बाकी मैंने कहा कि ये जंगल तो है ही है, क्यों नहीं अपन ऐसा करें जो एक निजी रोपण भी हो जाए, तो उनकी कोई सांस के कोई पैसे लगे ना कुछ नहीं, सुरक्षा भी बरबारी हो जाए, काश्तकार कर लेंगे। बाकी हुक्म निवेदन है कि इसके अलावा काश्तकार को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ, जो एक सांस की जंगल जो कटने जा रहे थे वो बचे है ना, अपनी पाठ बल्ली जो अपने निर्मित करी खुद ही अपने, मतलब उनने मतलब ये मतलब उपयोग करी, इस कारण से जंगल का भी बड़ा। और इसके अलावा मैंने MP तक भी निपट नहीं रहा, मैं राजस्थान में भी ये प्रक्रिया अपने जो थे, बहुत से लोग क्या पहले मूली काटते थे, आदिवासी लोग क्या है कि जंगल में जाके मूली काट के बेचते थे, मैंने उनको क्या करा, बीज से जोड़ा, उनको पौधे तैयार कराए, जहाँ पानी का साधन था तो वहाँ तो मैंने बेड तैयार कराए, जहाँ पानी का साधन उनके नहाने धोने की जगह होती थी ना, जो पानी जाता वहाँ पे मैंने पौधे तैयार करे 200, वो पौधे मतलब हाट बाजार में बिकवा के उनको अर्जित आय पैदा करी, वो शेष पौधे उनकी निजी भूमि में लगाए, जो काफ़ी वृक्षों के मामले में हो गए उनको तो। और सभी कलेक्टर महोदय, फॉरेस्ट अधिकारी महोदय ने जो मैंने लगाए पौधे, जो वृक्ष बने, सबको ने सत्यापन करा। अभी गत वर्ष 4 जुलाई 2024 में कलेक्टर साहब मातम साहब ने, मैंने एक रोजर नदी जो निकलती है पिपरोदा से, वो मैंने उन्हें दोनों सिरों पे रोकने की कोशिश करी, दोनों साइड पे मैंने पौधे लगा के वृक्ष बनाए, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि चलो हमें बताओ, तो 4 जुलाई 2024 में कलेक्टर साहब ने वो रोजर नदी जो बहती दोनों सिरों पे भूमि कटाव रोकने का, तो उन्हें 1 किलोमीटर जो मतलब घूम के उन्हें निरीक्षण करा, तो उन्हें बेहतर बजाय मेरे को सम्मानित करा इसके लिए। और हम इसके लिए संभाग लेवल के कलेक्टर महोदय, कितनी बार में संभाग गोल्ड मेडल मिला हो मेरे को, ग्रीन आइडल अवार्ड मिला, और आप लोग भी मेहरबान।
3: हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपने स्तर पर क्या प्रयास करके वो पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं?
2: किसान भाई मेरे लिए एक देवता, एक मतलब, क्योंकि मेरे को उनने संभाला है नहीं, उनने मतलब क्या मेरे मतलब कार्यशैली को उनने संवारा, उनने मेरी बात मानी, और अपनी निजी भूमि में जो मेरे कहने के अनुसार जो अपनी भूमि मतलब जो शेष भूमि जो छोड़ के उनने वृक्षारोपण करे, जो वृक्षों के रूप में पड़ती है, तो मैं सबसे बड़ा, मेरे साथ में अभी भी कर्षक भाई अभी आए हुए मेरे सभी बोलो सभी मतलब आज भी मेरे साथ में कुछ लोगों को लाए जो मैंने मतलब रोपण करा रखा हाँ, उनका
3: मतलब अपने स्तर पे कर संरक्षण कर सकते पर्यावरण
2: मैंने मेरा फोकस होगा सबसे

0: मैं मतलब कर्षक भाई को ही देता हूँ, मतलब जो
1: जी
0: मेरी
1: जी
0: बातें
1: जी
0: उनने सर स्वीकार करी
1: जी
0: और विकट परिस्थिति में भी मतलब भूमि का
1: हाँ
0: टुकड़ा छोड़ के उनने, बस
1: हाँ
0: पहले तो हुकम थोड़ा सा ये हुआ कि झाड़का वाला है,
1: हाँ
0: कौन
1: हाँ
0: झाड़का लगा है, मतलब
1: हाँ
0: शुरुआत में मेरे को बहुत कठिनाई शुरुआत
1: हाँ
0: में, अरे झाड़के तो मत गए छुप जाते लोग, तो मैंने मतलब पर्यावरण पेड़ पौधे सबसे उनको बताया मैंने, चलो अपन क्या है कि ये बेड़ा कर सके उठा सकते, जो अपन क्या पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण देंगे, जो मतलब पूरी दुनिया को मतलब संचालित करेंगे,
1: हाँ
0: तो मतलब
1: संदेश
0: क्यों नहीं ये
1: दिया
0: सब
1: था
0: पुनित कार्य में अपन तो कुछ कुछ एक
1: मतलब
0: जोड़ा
1: अच्छे से। जी
0: हुकम में, जैसे मेरा फोकस ये रहा जैसे कहीं होटल पे गया तो जब होटल में चार आदमी बैठे हैं वहां तो सक्सेस नहीं होता उससे बन, क्योंकि वो तो मजाक के रूप में लेते हैं, तो मैंने कहा ये मतलब ये तरीका है ये ठीक नहीं, तो मैंने सीधा मतलब लोगों के घर पे ही जाना शुरू करा मैंने, भैया आपके मतलब जमीन वगैरह कोई पौधे के नहीं है, तो मैंने क्या करा हुकम, जैसे थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे मेरा ये रहा कि भैया आपके गांव का क्या नाम है कि धावड़ा दे, धावड़ा का वृक्ष मतलब धावड़ा दे, तो मैंने धावड़ा दे वृक्ष कहाँ है ना, नाम तो पहले
1: वृक्ष के नाम पर
0: वृक्ष के
1: गांव का
0: नाम से
1: नाम।
0: गांव में रखा जाता था, तो मैंने ये धावड़ा दे, मैंने धावड़ा के वृक्ष कहाँ है या कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्यों नहीं जैसे मतलब ये तो धावड़ा के जो अपने जो एक नामन करना पड़ा वो तो चीजें होना चाहिए, जैसे गुलरी पाड़ा मतलब आंबा पाड़ा मतलब क्या खेरिया पाड़ा, ये हुक्म क्या है कि वृक्षों के नाम से गांव रखे, तो मैंने वो तो आज देख भी नहीं रहे, तो इस प्रकार से मैंने और हुक्म एक मैंने ये देखा क्या है कि प्रजातीय मतलब वृक्षों के नाम से जो अपने दीवार के आसपास देवी पूजा होती है ना वृक्षों के नाम से, जैसे मैं राठौड़ हूँ तो हमारे नीम की पूजा होती है, तो मैंने ऐसे लोगों को बहुत जोड़ा, मैंने चलो आपकी कहीं पूजा हो गया फलाने, तो मैंने ये पेड़ लगा हुआ, तो मतलब इससे मतलब प्रेरणा मिली, तो ये मतलब वर्कशॉप बढ़ते गए हुक्म और
1: से जोड़ा,
0: जी हुक्म और आज
1: भावना से जोड़ा,
0: भावना से जोड़ा मतलब क्या
1: सब लोग जुड़ते
0: मैंने
1: हैं
0: धार्मिकता से जोड़ा चारों तरफ से मैंने
1: आस्था
0: क्या
1: से
0: है,
1: भावना से
0: जी
1: जोड़ा।
0: हुक्म और अभी भी मेरा लक्ष्य है, अभी मैं करीबन इसी मतलब साल इसी बरसात में करीबन 4-6 हज़ार पौधे मैं फिर लगाऊंगा, और
1: बहुत
0: मेरा
1: अच्छा
0: रेशा हर सालों का मेरा है 4-5 हज़ार पौधे मतलब मैं हर वक्त में लगाता हूँ, और जहाँ तक मेरी जीवन है वहां तक मैं ये पुनित कार्य मैं करता रहूंगा।
2: हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के अधीक्षण यंत्री श्री हनुमत सिंह मालवीय जी। वो हमें बताएंगे कि किस तरह प्रदूषण मुक्त होकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं उनके विचारों को।
3: जैसा कि आपको विदित है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि विश्व पर्यावरण चिंतन के ऊपर हुई थी, उसमें भारत सरकार द्वारा भी भाग लिया गया था, जिसमें हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। उस समय से ये तय किया गया कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और उसका प्रतिवर्ष यूएन द्वारा एक थीम दी जाएगी। इस वर्ष की थीम जो दी गई है, इंस्पायर्ड नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, और हैशटैग दिया गया है नाउ फॉर क्लाइमेट। जैसा कि आप जानते हैं, औद्योगिक विकास और अर्बनाइजेशन की वजह से जल एवं वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा है, और इसके वजह से हम देखें तो इसके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। हमारी आम जनता और जितने श्रोतागण हैं उनसे अपेक्षा है कि वह इन कारणों के निदान के साथ साथ इनसे कैसे निपटा जाए, जिसको हम अडॉप्टेशन बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप पाएंगे कि अभी बहुत तेजी से बारिश एक साथ हो जाती है, अथवा टेम्परेचर बहुत एकदम से बढ़ जाता है, कभी हवा तूफान आते हैं, तो चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारी खेती बाड़ी हमारा बिजनेस हो, हम इन सब में इन द्रुतगामी घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी, हमें अडॉप्टेशन करना होगा, और हम ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्थानीय लेवल पे कैसे उनमें हमारा सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना है। चाहे हम जल संरक्षण से स्टार्ट करें या हम एनर्जी कंजर्वेशन से स्टार्ट करें, ग्रीन एनर्जी के उपयोग से करें, सोलार एनर्जी का यूज करें, साइकिल का उपयोग करें, और हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जिससे हम जल संरक्षण कर सकें, वायु प्रदूषण को बचा सकें, वेस्ट का मिनिमाइजेशन कर सकें। जैसे कि आपको ज्ञात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ स्टार्ट किया। मिशन लाइफ में 7 थीम दी गई हैं, जिसमें खास तौर पे वेस्ट मिनिमाइजेशन की बात है, जल संरक्षण की बात है, सबसे कम जनरेट करने की बात है, किचन वेस्ट और प्लास्टिक

0: वेस्ट, ई वेस्ट इत्यादि कम से कम हम उपयोग कर सकें, सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग नहीं करना है। इन सब को करके हम अपने देश प्रदेश और हमारी कॉलोनी इत्यादि को पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकते हैं और इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हो रहे परिवर्तनों में कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे उनको कम किया जाए, उसमें हमारी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों, ये एक विशेष कार्यक्रम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्य

0: करेंगे और अपने छोटे छोटे प्रयासों से हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को बचाएंगे, संरक्षित करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाएंगे। हमेशा लेने की प्रवृत्ति छोड़कर देने की प्रवृत्ति अपनाएंगे, यही हमारे इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम है, सोच है, विचार है।
1: भैया अब आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित विशेष कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग अंशु तिलेठे को दो और कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा को। अब आगे बढ़ते हैं, बात पर्यावरण की हो रही है और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत की भी हम बात कर रहे हैं। एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ो भाव।

हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। जी हाँ, जो गीत है फिल्म बूंद जो बन गई मोती, स्वर मुकेश और बोल आप सुन रहे हैं आनंद लें। एक को पसंद करो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने।

चित्रकारी हमने देख रही है, देख रहे हैं, जाखों सवारबे की जरूरत है, सजावे की जरूरत है, बनावे की जरूरत है। तभी तो हम कहते हैं ना कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और जब पर्यावरण सुरक्षित रहे थे, संवर्धित रहे थे, बढ़ थे आगे, स्वच्छता रहे थे, तो मन कहन लगा थे, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह वो कहीं पे नहीं। भैया जो गीत हम आपके लाने सुनवा रहे हैं, जब गीत के लाने पसंद करो है रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सबीता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार ने बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, और फिल्म को नाम है मन की आंखें, आवाज मोहम्मद रफी की।

सुन रहे हैं वो ही सब आपके लाने आज जमीन पे उतार के रखने हैं, बनाए रखने हैं। कैसे कि गांव में अगर हरियाली है, खुशहाली है, तो पूरे देश में हरियाली खुशहाली रहेगी, क्योंकि देश में सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा क्षेत्रफल गांव को है। हम सब गांव के लोगों के लाने भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, खेतों में, सब में स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने हैं, पर्यावरण को बनाए रखने हैं। सुनते हैं जो गीत, आनंद लेते हैं। फिल्म गोदान को गीत है, गांव है मोहम्मद रफी ने।

0: त्रिपुरा के पतवा शरीर के डोले मनवा कि यारा में उठते हिलो।
1: भैया गांव की बात करी जाए, पर्यावरण की बात करी जाए, तो जगीत में जो दर्शन हो रहे हैं, जगीत में जो आप सुन रहे हैं वर्णन

तो भैया जे थे आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत के आपके पसंद करे भाई गीत, और हम चाह रहे हैं कि आप भी अपने पसंद के गीत सुनबो चाह रहे हैं तो हमें चिट्ठी लिख दे। हमारा पतो है ग्राम सभा कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002। संगे संगे भैया फिल्म को नाम अपनो पूरा पतो साफ साफ अक्षरों में जरूर लिख दो तो हम आपके लाने आगे भी गीत जरूर सुनवे हैं। चलत चलत एक बात है हम आपको बता देवे कि अब खरीफ की फसलों की बुआई को टेम पास आ गयो है तो उन्नत किस्में जो हैं सोयाबीन की बे हो चाहे धान की हो उन सब की व्यवस्था करके रखें। किसान भाइयों ने धान की नर्सरी डालबे को काम शुरू कर दो है तो बाकी लाने भी बड़ी प्राथमिकता से करें। और रहो सवाल सोयाबीन को तो सोयाबीन में ध्यान रखने हैं कि हमें कम समय अवधि वाली और कम पानी वाली किस्मों को चुनाव करने हैं। और सोयाबीन को बीज जब खरीदें तो जा बात को ध्यान रखें कि बिल पक्को जरूर ले लें और जो प्रमाणित जातियां हैं वे ही खरीदें और ऐसी जगह से खरीदें जहां से आपके लाने पक्को बिल मिले, है ना। और बीज को अंकुरण परीक्षण तो हमें करके देखना ही है जी। कछु बातें हैं जो हमें आपसे और भी करने हैं थी, मनो टेम है नहीं है, समय को अभाव होवे कारण अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। फिर कोई और कार्यक्रम में मिले हैं तो आपके लाने पूरी जानकारी दे हैं। तब तक के लाने स्वीकार करो मनोज भैया की दो हाथ जोड़े की राम राम।

अभी श्रोता साथी सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसका अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया। FM पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव स्टोरी से। स्वरलता मंगेशकर और अमित कुमार का है, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था शान। गीत आनंद बख्शी के लिखे हुए थे और संगीत था आर डी बर्मन का। सुनवा रहे हैं अब आपको फिल्म दबंग में साजिद वाजिद और श्रेया घोषाल की युगल स्वर में जलीस शेरवानी का लिखा यह गीत, संगीत साजिद वाजिद का।

और लीजिए, फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म खट्टा मिठा से। स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर का है। गीत के बोल गुलजार के लिखे हुए हैं।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पॉप म्यूजिक। हमारे आज के कलाकार हैं सोनू निगम।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

इसके साथ ही कार्यक्रम पॉप म्यूजिक अब यहीं पर संपन्न होता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।

अयोध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान।

0: पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना और स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन

0: इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
5: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के

0: साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल,

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म काला बाजार से लिया है। गायक स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत SD बर्मन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद और स्वर मोहम्मद रफी का, शब्दकार शकील बदायूनी हैं और संगीतकार रवि हैं।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए, फिल्म का नाम है बरखा। राजेंद्र कृष्ण की भूल, चित्रगुप्त।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: वित्त भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajnon ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं. उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में. संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर. फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया.

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

इसके बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

नीरजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीक हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर

क्रिटिक्स अवार्ड, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है, उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।
1: दे

दिल जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नगमे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद।

टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: अभी श्रोता सती सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार फिल्म गीत।
1: सा रे गा मा।
2: तुम भी गाओ।

आनंद बख्शी की शब्द रचना को अभी आपने सुना। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, स्वर्था सुरेश वाटकर और अनुराधा पौडवाल का, और फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार। सुनवाते हैं आपको सुषमा श्रेष्ठ और साथियों के स्वर में द बर्निंग ट्रेन का ये गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

0: सुषमा श्रेष्ठ और साथियों के स्वर में अभी आपने फिल्म द बर्निंग ट्रेन का ये गीत सुना। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। सुनवा रहे हैं अब आपको महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म निकाह का ये गीत। शब्द हसन कमाल के लिखे हुए हैं और संगीत है रवि का।
1: अभी अलविदा मत कहो।

लीजिए, अब सुनिए आशा भोसले के स्वर में फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के लिखे हुए हैं और संगीत है राजेश रोशन का।

0: हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर, टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो।
1: और जी सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा सुनते चलें, जिसे हमने लिया है फिल्म पाकीज़ा से। स्वर लता मंगेशकर का है, गीत के बोल कैफी आज़मी के हैं, संगीत है गुलाम मोहम्मद का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष

2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।